0: JCPOA actually gave a chance to Iran to fund these proxies and to build more nuclear capabilities.
1: Pranay, I want to thank you for getting us the latest. We'll keep coming back to you for further updates. On to more breaking news coming in. Mamata Banerjee has cracked the whip on rebel leaders. Kunal Ghosh, who continues to be part of Didi's camp, has replaced Sudeep Bandyopadhyay as North Kolkata Organizational District President. This after Sudeep had met with Union Minister Bhupendra Yadav at his residence. Shiny Ghosh, who was one of the 19 rebel MPs to sign the letter, has been removed as TMC Youth President. She has been replaced by Arnab Banerjee. That's the latest coming in from Mamata's camp. This as those who've turned rebel have now been removed of the positions that they originally held. Listen in.
2: আজকে জাতীয় কর্মসূচি সমিতিতে আমায় এবং জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে ইনক্লুড করা হয়েছে। এছাড়া আলিফা আহমেদকে মহিলা কেন চেঁচাচ্ছ ভাই, তাহলে কি বলবো বয়স্ক লোক? অর্ণব ব্যানার্জি তাকে ইউথের প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে। মোশাররফ হোসেনকে মাইনরিটি প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে। এছাড়া কুনাল ঘোষকে নর্থ ক্যালকাটার প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে। আরেকটা হচ্ছে যে এই যে রিসেন্টলি আগুন ধরলো তাতে 4000 ইভিএম মেশিন পুড়ে গিয়েছে।
3: প্রফেসর সৌগত রায়, অনারেবল এমপি এন্ড জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, कहीं जो डिस्कशंस हुआ उसमें पूरा ब्रीफिंग, जो लिस्ट है नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, ये सब पूरा पार्टी तैयार करने के बाद पूरा लिस्ट न्यू यूथ प्रेसिडेंट अर्णब बैनर्जी एंड विद अर्णब बैनर्जी अभी तीन और एक कोर कमेटी जैसा और प्रेसिडेंट अर्णब बैनर्जी वो लोग काम करेंगे और रिव्यू के बाद पूरा कमेटी होगा यूथ कांग्रेस का और कई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नया अपॉइंटेड हुआ और महिला प्रेसिडेंट तो एमएलए अलीफा अहमद डिसीशन पहले ही हो गया था।
4: সেগুলো অনুমোদন লাভ করেছে ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটির এই বৈঠকে। আর আমরা গতকালই এই রাজ্যের তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী, তার নাম বলেছিলাম, আলিফা আহমেদ এমএলএ। আজকে যুবর সভাপতি স্টেটের অর্ণব ব্যানার্জি তার হয়েছে এবং সে হয়েছে যুবর সভাপতি। এবং ছাত্র তো ইতিমধ্যেই প্রিয়াঙ্কা অধিকারী আমরা বলে দিয়েছিলাম, বাকিগুলো আপনারা জানেন। আর আমাদের পক্ষ থেকে স্পোকস পার্সন কুনাল ঘোষ, তিনি আপনাদের কাছে বাকিটা বলবেন। আর আমি আপনাদের কাছে এটা জানাতে চাই যে কুনাল ঘোষ উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মানীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং তিনি এই নাম অনুমোদন লাভ করেছেন কার্যকরী কমিটি।
1: Cutting across to my colleague Anirban Sinha Roy, joining us on the broadcast. Anirban, while Mamata Banerjee is replacing those who've turned rebel, but how is this part of the larger strategy to keep the flock together, or that is not the way that they are wanting to take?
0: Well, you see, the action against Sudeep Bandyopadhyay comes after he and Shatabdi Roy were reportedly been seen entering Union Minister Bhupendra Yadav residence in Delhi earlier today. And that's why this is a key change, and the TMC reshuffle signals a firm message from the TMC leadership against the dissidents within the ranks. And what we have seen is the Kunal Ghosh, who is one of the loyalists of Mamata Banerjee from the last 2-3 months and after the debacle that has happened inside the party. And that's why he has been gifted with the post of the MLA, who is the Belaghata MLA, has been appointed as the Trinamool President of the North Kolkata Organizational District. And we know that Sudeep Bandyopadhyay, also being the MP from the seat of North Kolkata, and he has been removed as the TMC Party Organizational President, North Kolkata. So that's why what we have seen so far is this signals a firm message from the TMC leadership, but whether the other MPs or other MLA will be with the party or not, that is the concern of the time. But right now, that one after the another, MLAs and MPs are becoming rebel of the Trinamool Congress.
1: All right, Anirban, many thanks for getting us those details. And while rebellion within the Trinamool Congress now appears headed towards a rupture, Mamata Banerjee is facing her biggest test yet, as rebel TMC MPs are set to meet West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari tomorrow, after which crucial meeting of the rebel MPs with the Speaker is expected to happen on Monday. Amid this, another MP could be gravitating towards the dissent camp. Senior MP Sudeep Bandyopadhyay was seen meeting with Union Minister Bhupendra Yadav, accompanied by rebel MP Shatabdi Roy. If Bandyopadhyay joins the group, the numbers on the rebel camp would rise to 20. Remember, rebel Lok Sabha MPs wrote to Speaker Om Birla seeking recognition as a separate group. The letter has the signatures of 19 MPs backing the move. Rebel MP Jagdish Barma Basunia has said that all 19 MPs who signed the letter will be meeting CM Shubhendu and the Speaker Om Birla, adding that senior party MP Kalyan Banerjee might join them as well. He has also said that they will ask for a separate seating allocation and demand the Speaker to recognize them as the real TMC. Meanwhile, a day after senior MP Kalyan Banerjee slammed Bhaipo Abhishek for his arrogance, he has said that he forgives Abhishek as he is like his son and fathers always forgive their sons. This is after Abhishek earlier in the day sought to downplay the differences, saying he respects the veteran leader.
5: Jaane dijiye. सुदीप दा चला गया बहुत आदमी चला गया सुदीप दा भी चला गया उसमें क्या है कुछ नहीं है लेकिन इन लोगों को इलेक्शन में खड़ा होगा ना नहीं खड़ा होगा तो इलेक्शन में जब खड़ा होगा तो पब्लिक ने उनको शिक्षा दे देंगे सुदीप दा का तबीयत भी अच्छा नहीं था सुदीप दा कभी पार्लियामेंट में नहीं जाते थे सिर्फ वोट देने के लिए जब जब था वोट देने के लिए जाते थे गए पिता का काम है लड़का का सब गलती माफ करना अभी एक क्या है अभी हम लोग जो ही है एक साथ लड़ना होगा हम लोग को पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष का गणतंत्र अभी खतरे में है स्पेशली पश्चिम बंगाल का गणतंत्र कभी ऐसा हालत नहीं हुआ पश्चिम बंगाल का जो विरोधी को पूरा वाइप आउट कर देंगे विंडिक्टिव चीफ मिनिस्टर है तो उसको अगेंस्ट में लड़ना होगा
6: जो नए नए सांसद हुए हैं या विधायक हुए हैं उनका मन में जोर नहीं था वो सोच रहे थे कि अपने को क्या होगा तो जल्दी जल्दी निकल गए निकल के अभी उसको कोई पोजीशन नहीं मिला अभी तक तय नहीं है कि संसद में जो लोग निकले हैं उसको बीजेपी में दिया जाएगा कि नहीं
7: तो सुदीप बैनर्जी लॉबी करते थे वो तो बहुत दिन से लॉबी करते थे वो एक पहले भी एक बार तृणमूल से दीदी को हाथ छोड़कर भाजपा चला गया अलग हो गया था सस्पेंड कर दिया था पार्टी तो उनका आदत है उनका उनका एक प्रॉब्लम है एंटायर तृणमूल वर्कर्स डिड अ लॉट फॉर हिम द वोटर्स who are anti-Bhajpa and in favor of Mamata Banerjee, voted for him. And now he is sitting with Bhupen Jadavji's residence.
8: पूरा पश्चिम बंगाल ने टीएमसी को रिजेक्ट कर दिया ममता बनर्जी को रिजेक्ट कर दिया अभिषेक बनर्जी को रिजेक्ट कर दिया और जब कुछ नहीं मिल रहा था जब सत्ता से हट गया तब पब्लिक ने हटा दिया उसके बाद वो लोग क्या शुरू किया अपना जो बचे बुचे एमएलए है उनसे साइन चोरी करना शुरू कर दिया अभिषेक बनर्जी तो नेचुरली वो डर रहे कि उन लोगों का जो जमीन है जायदाद है सब कुछ अगर हड़प लेता है अभिषेक बनर्जी तो इसी डर से सब भाग जा रहा है अभिषेक बनर्जी से
9: टीएमसी के साथ कोई नहीं रहेगा ये पूरा कोरप्टेड पार्टी ये बुआ भातीजे का ये गवर्नमेंट था तो इसलिए कल्याण सीनियर हो सकते लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है पार्टी में
1: The Trinamool Congress's troubles seem far from over after police reached the Kolkata residence of TMC National General Secretary Abhishek Banerjee at 2 a.m. to conduct searches in connection with an alleged land scam investigation. We are getting you this report.
10: Drama unfolded once again at the residence of TMC National General Secretary Abhishek Banerjee in Kolkata's Kali Ghat. Police raided Abhishek Banerjee's residence in search of his personal

0: Charu Pandey, cracking government recruitment exams has almost become a short of hobby. The mathematics graduate from Chhattisgarh has cleared 19 exams so far. These include SSC, banking, railway and state government recruitments.
1: SSC CGL है, CHSL है, MTS है, मतलब ये सब पैटर्न तो एक ही फॉलो करते हैं, बस सिलेबस कम ज्यादा होती थी तो मैं सारा फॉर्म डालते गई. किसी का रिजल्ट पहले आता था, किसी का रिजल्ट लेट से आता था.
0: चारू अचीव दिस फीट विदाउट एनरोलिंग इन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट.
1: हम लोग दिन भर पूरी टाइम पढ़ाई तो नहीं कर सकते. हाँ. हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा दूसरा मतलब माइंड चेंज करने के लिए काम करेंगे. हाँ, हाँ. तो मैं वो माइंड चेंज करने के लिए मैं ट्यूशंस लेती थी क्योंकि मुझे टीचिंग पे बहुत इंटरेस्ट था.
0: She used digital resources extensively during her preparations.
1: मैं YouTube से पढ़ाई करती थी, Insta पे रील्स डालते थे टीचर्स. हाँ. तो वहाँ से मैं उनसे कुछ कुछ सीख के ऐसा पूरा मैनेज करती थी. बस मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने. हाँ, हाँ. बस उस पर मैं टेस्ट देती थी.
0: Charu has two tips for those appearing in exams: time management and positive thinking. With Sumi Rajapan, Bureau Report, India Today.

0: टाइगर का हुक्म।
1: But the casting buzz isn't the only reason fans are excited. If the reports are true, Jailer 2 will reunite Hrithik and Rajnikanth nearly four decades after Bhagwan Dada in 1986, where Hrithik appeared as a child actor alongside the superstar.
2: Lo, kela khao.
3: Govinda, tujhe zara sa bhi kuch ho jata hai, to main ghabra jata hu.
2: तुम जिसके नाम से सब घबराते हैं। बापू, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा।
3: दादा सब ठीक है ना? ये है स्वरूप चाचा, नमस्ते करो।
1: टुडे ही रिटर्न्स एज वन ऑफ इंडियन सिनेमास बिगेस्ट स्टार्स, मेकिंग इट अ रेयर फुल सर्कल मोमेंट।

0: Charu Pandey, cracking government recruitment exams has almost become a short of hobby. The mathematics graduate from Chhattisgarh has cleared 19 exams so far. These include SSC, banking, railway and state government recruitments.
1: SSC CGL है, CHSL है, MTS है, मतलब ये सब पैटर्न तो एक ही फॉलो करते हैं, बस सिलेबस कम ज्यादा होती थी तो मैं सारा फॉर्म डालते गई, किसी का रिजल्ट पहले आता था, किसी का रिजल्ट लेट से आता था।
0: चारू अचीव दिस फीट विदाउट एनरोलिंग इन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट।
1: हम लोग दिन भर पूरी टाइम पढ़ाई तो नहीं कर सकते, हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा दूसरा मतलब माइंड चेंज करने के लिए काम करेंगे, तो मैं वो माइंड चेंज करने के लिए मैं ट्यूशंस लेती थी क्योंकि मुझे टीचिंग पे बहुत इंटरेस्ट था।
0: She used digital resources extensively during her preparations.
1: मैं YouTube से पढ़ाई करती थी, इंस्टा पे रील्स डालते थे टीचर्स, तो वहाँ से मैं उनसे कुछ कुछ सीख के ऐसा पूरा मैनेज करती थी। बस मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने, बस उस पे मैं टेस्ट देती थी।
0: Charu has two tips for those appearing in exams: time management and positive thinking. With Sumi Rajapan, Bureau Report, India Today.

0: टाइगर का हुक्म।
1: But the casting buzz isn't the only reason fans are excited. If the reports are true, Jailer 2 will reunite Hrithik and Rajnikant nearly four decades after Bhagwan Dada in 1986, where Hrithik appeared as a child actor alongside the superstar.
2: Lo, kela khao.
3: Govinda, tujhe zara sa bhi kuch ho jata hai, to main ghabra jata hu.
2: तुम जिसके नाम से सब घबराते हैं। बाबू, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा।
3: दादा सब ठीक है ना? ये है स्वरूप चाचा, नमस्ते करो।
1: टुडे ही रिटर्न्स एज वन ऑफ इंडियन सिनेमास बिगेस्ट स्टार्स, मेकिंग इट अ रेयर फुल सर्कल मोमेंट।

0: mere 32 seconds, and that altered life forever. For survivors, for family members, who are left to trace the last remains of their loved ones. And as life moved on in its own pace, those fatal 32 seconds on air of AI-171 has got frozen in a time bubble for most of these people. After spending many years in London, Bhavesh Modi came back to Ahmedabad to live with his mother and sister. He was on his way back to London on 12th June 2025. Within a minute of takeoff, his sister Sunita and his nephew and niece were trying to trace his last remains.
1: जब पता चला उसके बाद से लेके अभी तक जैसे डिप्रेशन में ही चल रहा हूँ ना ऐसा ही चल रहा है एक साल पूरा ऐसे ही गया है मैं छह महीना तो रात सोई ही नहीं बिल्कुल नींद ही नहीं आती नींद की गोली भी मेरे लिए मतलब काम नहीं कर रही हो ना ऐसा है छह महीने तो मैंने मुश्किल से निकाले मेरा भाई था वो मतलब मेरा सहारा ही था मैंने मेरी शादी हुई पर मेरे हस्बैंड इतना मतलब कोई इतना है कमाते भी नहीं है तो उसी के सहारे मेरे बच्चों को भी उसने ही बड़ा किया है

0: Charu Pandey, cracking government recruitment exams has almost become a short of hobby. The mathematics graduate from Chhattisgarh has cleared 19 exams so far. These include SSC, banking, railway and state government recruitments.
1: SSC CGL है, CHSL है, MTS है, मतलब ये सब पैटर्न तो एक ही फॉलो करते हैं, बस सिलेबस कम ज्यादा होती थी तो मैं सारा फॉर्म डालते गई. किसी का रिजल्ट पहले आता था, किसी का रिजल्ट लेट आता था.
0: Charu achieved this feat without enrolling in any coaching institute.
1: हम लोग दिन भर पूरी टाइम पढ़ाई तो नहीं कर सकते. हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा दूसरा मतलब माइंड चेंज करने के लिए काम करेंगे. तो मैं वो माइंड चेंज करने के लिए मैं ट्यूशंस लेती थी क्योंकि मुझे टीचिंग पे बहुत इंटरेस्ट था.
0: She used digital resources extensively during her preparations.
1: मैं YouTube से पढ़ाई करती थी, Insta पे रील्स डालते थे टीचर्स, तो वहां से मैं उनसे कुछ कुछ सीख के ऐसे पूरे मैंने.

0: टाइगर का हुक्म।
1: But the casting buzz isn't the only reason fans are excited. If the reports are true, Jailer 2 will reunite Hrithik and Rajnikant nearly four decades after Bhagwan Dada in 1986, where Hrithik appeared as a child actor alongside the superstar.
2: Lo, kela khao.
3: Govinda, tujhe zara sa bhi kuch ho jata hai, to main ghabra jata hu.
2: तुम जिसके नाम से सब घबराते हैं बाबू, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा।
3: दादा सब ठीक है ना? ये है स्वरूप चाचा, नमस्ते करो।
1: टुडे ही रिटर्न्स एज वन ऑफ इंडियन सिनेमास बिगेस्ट स्टार्स, मेकिंग इट अ रेयर फुल सर्कल मोमेंट।

0: आज के हमारे गेस्ट एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनका अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है. ही इज ऑल्सो द बेस्ट नोन डायबिटोलॉजिस्ट इन द कंट्री, पर वो फेमस इस बात से हैं कि अगर आप उनके पास जाएं और कहें डॉक्टर साहब मैं तो फीकी चाय पीता हूँ, मुझे डायबिटीज कैसे हो गया, तो वो आपके पराठे का साइज बताएंगे, पराठे की थिकनेस पूछेंगे, वो दवाइयाँ कम देते हैं, आपकी डाइट ज्यादा फिक्स करते हैं.
1: वेजिटेरियन हम साहब, हमको कैसे डायबिटीज हो गई? तो हम कहते 70% तो इंडिया वेजिटेरियन है और उन सब उसमें से आधे लोग डायबिटिक पड़े हुए हैं.
0: आपके पास आप, मैं कैसे बोलूं आप ही के मुंह पर ये बात चली, मैं बता देती हूँ. मैंने सुना है कि कुछ आपके पेशेंट्स आपसे बहुत खफा हो जाते हैं, आपके पास वापस नहीं जाते क्योंकि आप दवाइयाँ नहीं लिखते हैं.
1: नहीं,
0: और आप कहते हैं आप डाइट ठीक करो, आपने दवाइयाँ लिखना बंद कर दिया है.
1: समझा कर अच्छी तरह से बात करो, हमने सब ट्राई कर लिया लेकिन उससे बात बनती नहीं है. तो आज ही एक महानुभाव आए थे, वो कह रहे थे साहब हमारी शुगर 250 पर जा रही है खाने के बाद. तो मैंने कहा कि मैं कोई दवा नहीं बदल रहा हूँ. आप दवा नहीं बदल रहे, ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं डाइट बदल रहा हूँ आपकी.
0: क्या ये सैलेड सलाद भी है जो घर पे लोग खाते हैं? सैलेड इज वेरी फैंसी, सलाद इज फाइन.
1: कहते हैं कि अब नहीं कर पाएंगे हम डाइट जो आपने बताया. राइस छोड़ नहीं सकते साहब, ये बात है, इसीलिए हमने सलाद. आज सुबह देखिए मैंने 5 किलोमीटर वॉक किया, तो आई एम एंटाइटल्ड टू अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा फूड. चाय इज द बेस्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ बादाम, दैट इज द बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस इन द मॉर्निंग.
0: आर यू सेइंग चाय सुबह चीनी के साथ इज द बेस्ट वे? ये क्या बोल रहे हैं आप?
1: लड्डू आपको ले चाहिए? आप क्या पसंद करते हैं?
0: मैं तो चाहती हूँ कि मैं अच्छा सा बेसन का घर में बना हुआ लड्डू या आटे का लड्डू खाऊं. अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी सी चीटिंग करी है, तो डॉक्टर साहब बैठे हुए तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ उन चीजों के नाम. एक्चुअली में जो लोग खाते हैं वो है रसमलाई, गुलाब जामुन
1: जी.
0: तो मेरे घर में मोती चूर के लड्डू रात को जरूर खाए जाते हैं, दो ही तो खाए हैं होता है. We have to talk about mangoes.
1: Yeah.
0: I come from UP. I have very fond memories of eating mangoes.
1: पहले तो ये भी कह दूँ मैं भी लखनऊ का हूँ.
0: ओहो, क्या बात कर रहे हैं आप?
1: तो
0: रिट्स के लड्डू पर अलग से एपिसोड करेंगे.
1: रोटी बुरी नहीं है, लोगों को आप रोटी को खाइए लेकिन उसको बदल दीजिए. लेकिन रोटी और खाने से 20 मिनट पहले 2 कटोरी सैलेड लें, उसमें पूरा 1 टमाटर लें.
0: तो ये तो बड़ा अच्छा है कि जो भी डायबिटिक्स है इसे ट्राई कर सकते हैं खाने के पहले.
1: जो बादाम जिसने लिए 30 मिनट पहले उसकी शुगर कम है. फूड इज अ प्लेजर ऑफ लाइफ एंड दैट वी कैन नॉट जस्ट डिनाई दिस प्लेजर ऑफ लाइफ.
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर वर्सेस इंटरनेट. आई एम सोनल मेरोत्रा कपूर. आज के हमारे गेस्ट एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनका अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, तो आज जब उन्होंने 2 घंटे हमारे पॉडकास्ट के लिए निकाले तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. ही इज ऑल्सो द बेस्ट नोन डायबिटोलॉजिस्ट इन द कंट्री, पर वो फेमस इस बात से हैं कि अगर आप उनके पास जाएं शुगर की बीमारी लेकर, डायबिटीज लेकर, तो वो दवाइयाँ कम देते हैं, आपकी डाइट ज़्यादा फिक्स करते हैं. आप उनके पास जाइए और कहें डॉक्टर साहब मैं तो फीकी चाय पीता हूँ, मुझे डायबिटीज कैसे हो गया, तो वो आपके पराठे का साइज बताएंगे, पराठे की थिकनेस पूछेंगे, एंड ही विल गो डाउन टू द डिटेल्स टू अंडरस्टैंड कि आपने खाया क्या था. ऐसे डॉक्टर्स हमारी कंट्री में बहुत कम होते जा रहे हैं. तो जब उन्होंने ये बुक लिखी स्मार्ट कैलोरीज एंड कॉमन सेंस, तो मैंने ये पूरी बुक कवर टू कवर पढ़ी है, बहुत सारे मेरे नोट्स लगे हुए हैं इस पर. एंड आई हैव टू टेल यू, दिस बुक should be taught in schools. इसमें पूरा एक तरह से चिट्ठा कह सकते हैं आप लिखा हुआ है कि आपको क्या बेसिक्स है जो समझने चाहिए अपनी डाइट के बारे में. आप नौजवान हैं या अगर आप मेरे माँ बाप की एज पर हैं या ग्रैंड पेरेंट्स की एज पर हैं, प्लीज़ ये किताब ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये बहुत सारे मिथ्स बस्ट करने वाली है. और इसीलिए आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव डॉक्टर अनूप मिश्रा विद मी. थैंक यू सो मच सर.
1: थैंक यू सोनल फॉर इन्वाइटिंग मी हियर. आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर.
0: I have to start by asking a very common sense question because that's the name of the book as well.
1: Absolutely.
0: Diabetes चीनी से नहीं, diabetes सिर्फ मिठाई खाने से नहीं, diabetes कार्बोहाइड्रेट से होती है. ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इंडियंस?
1: नहीं, इसको मैं थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड कर दूं कि diabetes एक जीवन शैली का के कारण होती है, जिसमें जीवन शैली में आपके एक्सरसाइज भी है और आपकी डाइट भी है, दो अलग अलग कंपोनेंट हैं. और डाइट में देखिए कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो चीनी की आपने बात करी वो है, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपकी मैदे की चीजें भी हैं और ब्रेड भी है और साथ में फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोटीन सारी चीजें हैं. तो अगर हम डायबिटीज की बात करें तो हमको सब चीजों को लेकर चलना पड़ेगा. हम केवल कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं करेंगे, हम सारी चीजों की बात करेंगे जिससे कि वो किसी को डायबिटीज ना हो, या कोई डायबिटीज किसी को हो तो वो कैसे अपनी डायबिटीज को बेहतर कर सकता है जिससे उसको कॉम्प्लिकेशन ना हो. तो हर कंपोनेंट के पर ध्यान देने की जरूरत है.
0: लोगों को ये लगता है कि अगर वो बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, जोमैटो स्विगी से ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं जाते, सिर्फ घर का खाना खाते हैं, तो उनको डायबिटीज हो ही नहीं सकता. क्या ये एक ये मिथ है?
1: बिल्कुल मिथ है. देखिए, घर का खाना जो अक्सर लोग कहते हैं कि साहब वेस्टर्न फूड रिस्पॉन्सिबल है हमारी डायबिटीज ओबेसिटी के लिए, ये गलत बात है. वेस्टर्न फूड तो एक कारण है ही है, लेकिन उसके साथ घर का खाना एक कारण है. उसमें दो चीजें आती हैं जो कि आपने कुछ मेंशन ऑलरेडी कर लिए. एक तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा. इस समय इंडिया में कार्बोहाइड्रेट्स पूरे डाइट का अंश कितना है? 60-70% ऑफ द डाइट इज कार्बोहाइड्रेट, विच इज वेरी हाई. अगर आप विदेशों को देखें, वहां पर लोगों को 45-50% से ज्यादा नहीं होता कार्बोहाइड्रेट. दूसरी चीज जो घर में गड़बड़ हो रही है कि अक्सर पूरी बन रही है, अक्सर पराठा बन रहा है, और घी तेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, गलत तरीके के ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है. तो ये दो चीजें जो हैं, तो दो चीजें लोग कहते हैं. आपने एक कहा घर का खाना खाते हैं, और दूसरा कहा कि वेजिटेरियन है हम साहब, हमको कैसे डायबिटीज हो गई. तो हम कहते हैं 70% तो इंडिया वेजिटेरियन है, और उन सब उसमें से आधे लोग डायबिटिक पड़े हुए हैं. तो कुछ तो गड़बड़ है ही है. तो ये सब चीजें, तो कुछ मोटी मोटी चीजें जो मैंने बताई जो गड़बड़ हैं हमारी डाइट में, हमारे घर की डाइट में. इसमें मैं पूरा दोष नहीं दूंगा गृहिणियों का कि देखिए अगर बच्चों को देना है तो टिफिन में रोटी सूख जाती है, तो पराठा नहीं सूखता है, पूरी नहीं सूखती है. तो इनकी सो कॉल्ड शेल्फ लाइफ ज्यादा है, ये जो गड़बड़ चीजें हैं इनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा, तो वो दे देते हैं. तो बच्चों को भी वही प्रॉब्लम जो कि गृहिणियों को प्रॉब्लम हो रही है.
0: या तो मेरे ख्याल से चीला बनाकर अगर दे दे तो वो अच्छा सब्स्टिट्यूट.
1: हाँ, तो वो भी लोग कहते हैं इतना सूखी चीज हम कैसे खाएंगे.
0: मुझे ये बताइए कि जब हम कार्ब बोलते हैं ना, तो हमारी कई सारी जनता है जिनको अभी भी समझ भी नहीं आता कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है.
1: जी.
0: मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या दो रोटी सब्जी खाने वाले लोग, घर का खाना खाने वाले लोग आज इस समय डायबिटीज का शिकार क्यों हो रहे हैं?
1: देखिए, उस जैसे मैंने बताया कि उसके कई कारण है और एक कारण नहीं, लेकिन कार्ब पर हम अगर फोकस करें इस समय कार्ब पर, तो कार्ब देखिए दो प्रकार के होते हैं. एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसमें चीनी भी शामिल है, और जैसे मैंने कहा कि ब्रेड भी शामिल है, और उसमें अगर आप मैदे का कोई चीज़ बनाए, रोटी बनाए, पराठा बनाए, नान खाएं, वो शामिल है. और दूसरे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं, बड़ी लड़ी होती है कार्बोहाइड्रेट की, सिंपल नहीं होते, एक दो उसके नहीं होते हैं. तो लड़ी होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट की. वो लड़ी जो कार्बोहाइड्रेट की है वो शुगर को उतना प्रभाव नहीं करती है. अब आप कहिए कि रोटी की जहां तक बात है, रोटी बुरी नहीं है. लोगों को रोटी के अगेंस्ट मैंने एक आजकल देखा है कि चारों तरफ की रोटी नहीं खानी है. रोटी ऐसा कुछ नहीं है, गेहूं बुरा नहीं है. हम तो गेहूं पहले खाते थे, 40-50 साल पहले सेंचुरीज में खाते थे. तो हमारी जीवन शैली पूरी बदल गई, उसमें अब गेहूं हम ज्यादा खाएंगे तब प्रॉब्लम होगी. तो हम आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, स्ट्रेस से पूरे प्रभावित रहेंगे, पॉल्यूशन से प्रभावित रहेंगे, सिगरेट पिएंगे, अल्कोहल लेंगे, और उसके साथ हम रोटी 2-3-4 खा लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट वो हमको प्रभावित करेगा. तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम रोटी को? तो ऐसे रोज हमारे पास प्रश्न आते हैं. तो हमारे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं साहब रोटी को हमने हटा दिया. मैंने कहा नहीं हटाइए, आप रोटी को खाइए लेकिन उसको बदल दीजिए. क्या बदलें उसमें? देखिए, बेसन सब जानते हैं हमारे सारे घरों में यूज होता है. बेसन की मात्रा, ये एक मैंने प्रतिशत तरीके से बताया, बेसन की मात्रा आधी, आधा आप बेसन लीजिए, 1/4 आप ज्वार बाजरा लीजिए, ये सब पीस कर मिला लीजिए, और 1/4 आप व्हीट लीजिए यानी कि गेहूं लीजिए. अब इसमें क्या हुआ, क्या बदला? इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया, साथ में एक चीज और बढ़ गई जो बड़ी इंटरेस्टिंग है. लोग सोचते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट ही है और कुछ नहीं है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई. बेसन में हाईएस्ट प्रोटीन है अमंग्स ऑल कार्बोहाइड्रेट, 20%. अगर 100 ग्राम बेसन लेना तो 20 ग्राम उसमें प्रोटीन है, और गेहूं में 7-8 ग्राम, ज्वार में 7-8 ग्राम, इस तरह से. एक चीज और है इसमें जो जो कि अक्सर लोगों को पता नहीं होती है, और वो एक विशेषज्ञों को ज्यादा पता रहती है, वो ल्यूसीन नामक एक अमीनो एसिड है.
0: ये क्या करता है?
1: ल्यूसीन क्या करता है? हमारे हाथ पतले हैं, मसल पतली है, हम उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं कि हम एक्सरसाइज करें मसल के वेट्स के साथ एक्सरसाइज करें, और दूसरा हम ऐसा प्रोटीन लें जो मसल के अंदर घुस को उसको बना दे, वो है ल्यूसीन. तो ल्यूसीन की मात्रा इन सब चीजों में, ज्वार बाजरा और गेहूं में ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा सोया में होती है, लेकिन मैं बता दूं इसमें काफी ज्यादा होती है, नॉन वेजिटेरियन में भी ज्यादा होती है. तो ल्यूसीन को हम अच्छी तरह से रखें हर मील में, प्रोटीन को अच्छी तरह से रखें, जो कि बेसन के मिक्स करने के और भी प्रोटीन के सोर्सेज हैं, उसको मिक्स करने के साथ संभव है, तो प्रोटीन बढ़ जाए, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए, कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी बदल जाए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाए. आप देखेगा कि बिना मेडिसिन के आपकी शुगर जो है 30-40 से 50 mg/% नीचे चली जाएगी, और ये अक्सर हमने देखा है. तो आज ही एक महानुभाव आए थे, वो कह रहे थे साहब ये है हमारी शुगर 250 पर जा रही है खाने के बाद. तो मैंने कहा कि आप इस, मैं कोई दवा नहीं बदल रहा. उन्होंने कहा आप दवा नहीं बदल रहे, ये क्या कर रहे हैं? तो जैसे आपने कहा, तो मैंने कहा नहीं मैं डाइट बदल रहा हूँ आपकी, और एक हफ्ते में आप अपना रिजल्ट दिखाइएगा, तो मैं आपको 100% गारंटी करता हूँ कि 200 से नीचे आ जाएगी आपकी. तो इस तरह से देखिए, मैनिपुलेशन ऑफ डाइट, कोई एक्सट्रीम डाइट पर जाने की जरूरत नहीं है. हमको ये नहीं करना कि हम भूखे रहें, उबला खाएं, ये सब चीजें.
0: आई लाइक व्हाट यू सेइंग. आप कह रहे हैं कि रोटी मत बंद करिए, रोटी का आटा बदल दीजिए.
1: जी बिल्कुल, उसको बेहतर.
0: आपको आदत है रोटी खाने की, आप बिल्कुल रोटी खाएं, बस रोटी का आटा बदल दें, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स थोड़े ऐड कर दें, जिससे वो स्वाद में थोड़ा चेंज आएगा. उतना एडजस्ट करना पड़ेगा.
1: ये बात तो सही है.
0: उतना थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपके पास. अब मैं कैसे बोलूं आप ही के मुंह पर ये बात चली, मैं बता देती हूँ. मैंने सुना है, हाँ, न्यूज रूम में कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा कि कुछ आपके पेशेंट्स आपसे बहुत खफा हो जाते हैं, आपके पास वापस नहीं जाते हैं, क्योंकि आप दवाइयां नहीं लिखते हैं.
1: नहीं,
0: और आप कहते हैं आप डाइट ठीक करो, आपने दवाइयां लिखना बंद कर दिया है.
1: देखिए, वेस्टर्न एक फिलॉसफी है कि पेशेंट्स बड़ा समझा कर अच्छी तरह से बात करो. हमने सब ट्राई कर लिया लेकिन उससे बात बनती नहीं है. स्ट्रिक्टली हमारे पेशेंट से ना करें तो बात ही नहीं मानते, और उनको थोड़ा सा हल्का सा डर भी ना दिलवाएं तो बात नहीं मानते. तो उसमें तो कुछ लोग खफा हो जाते हैं, लेकिन आप, मैं आपको बताऊं, 90% लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं.
0: तो मुझे तो उदाहरण दीजिए कि मैं तो दिन रात सुनती रहती हूँ, मेरे पास घर के बहुत एग्जांपल्स हैं, इस पॉडकास्ट से मैंने बहुत सारा शेयर करा है कि मेरे डैड को फॉर एग्जाम्पल लगता है कि शुगर नहीं खाया, मीठा नहीं खाया, तो एनर्जी कहाँ से आएगी. उनको लगता है अरे दो पूड़ी, पूड़ी तो बड़ी लाइट होती है, हल्की हल्की होती है, ये तो खाने लेंगे तो क्या है, मैं कॉन्सेप्ट माई तरह पिज्जा बर्गर खा रहा हूँ. ये माइंडसेट कितना गलत है.
1: ये माइंडसेट आपने बिल्कुल सही बताया. ये भी माइंडसेट है कि हम शुगर नहीं खाएंगे तो हमको एनर्जी, दूसरी माइंडसेट है कि हम वेट लूज कर रहे हैं तो हम बिल्कुल वीक हो रहे हैं.
0: हाँ,
1: तो मैं उदाहरण जानते हैं किसका देता हूँ, मैं एथलीट्स का उदाहरण देता हूँ जो कि लॉन्ग टर्म रनर्स होते हैं, बिल्कुल पतले दुबले और 26 मील दौड़ते हैं. मैं ब्रूस ली का भी एग्जांपल देता हूँ.
0: हाँ.
1: इतना पतला दुबला, उसको आप कहेंगे अरे कमजोर आदमी, वो आपको एक सेकंड में गिरा दे. तो ये बात नहीं है, अंदर शक्ति होनी चाहिए आपकी मसल्स को, आपका आपका फैट लेवल बिल्कुल शरीर में कम होना चाहिए. उसमें जो शुगर जो कैलोरी देती है वो कार्बोहाइड्रेट भी देगा, वो प्रोटीन भी देगा, वो फैट भी देगा. अच्छी कैलोरीज विद मीनिंग चाहिए हमको, एम्प्टी कैलोरीज नहीं चाहिए. एम्प्टी कैलोरी शुगर में होती है, एम्प्टी कैलोरी शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस में होती है, जो कि कोलाज होते हैं, ये सब एम्प्टी कैलोरीज हैं, इसमें कोई गुण और नहीं होते हैं कैलोरी के सिवा.
0: राइट. तो मुझे समझाने की जरा ये कोशिश करिए कि अगर आज के डे में हम एक मॉडर्न डाइट की बात करें और मैंने इसमें बाहर का सारा खाना हटा दिया है कि बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, सब घर पे बन रहा है, आपके हिसाब से एक एवरेज अर्बन इंडियन के लिए, एंड व्हेन आई से अर्बन आई मीन, आई डोंट मीन रूरल, That's my only difference. I'm not seeing metros. I'm seeing एक urban diet, जो आदमी काम पर सुबह जाता है, घर पर वापस आता है, वैसे लोगों के लिए एक ideal diet क्या होनी चाहिए? Let's start with breakfast.
1: ठीक है. देखिए, breakfast में best चीज अगर आप खाते हैं तो अंडा है. Egg best protein है, excellent. जो लोग कहते हैं साहब हम योक नहीं खाएंगे, पीला पदार्थ नहीं खाएंगे, बिल्कुल गलत है. पूरा खाइए आप अंडा, एक्सेप्ट सम कैटेगरीज विच अ डॉक्टर विल बी एबल टू टेल. तो अंडा एक बात है. दूसरी जो अच्छी चीज जो कि कार्बोहाइड्रेट है वो ओट्स है. एक्सलेंट, बिकॉज ओट्स में फाइबर बहुत होता है.
0: Correct.
1: और हमने इस बुक में भी लिखा है

0: वो और भी चीजें हो सकती हैं, प्रोटीन भी हो सकता है और तरीके के प्रोटीन भी हो सकते हैं। सैलेड को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सब लोग जानते हैं सैलेड को और घर में थोड़ा बहुत खाते भी हैं। हम कहते हैं जितना खाते हैं आप डबल कर दीजिए उसे।
1: क्या ये सैलेड सलाद भी है जो घर पे लोग खाते हैं? सैलेड इज वेरी फैंसी, सलाद इज फाइन।
0: जो आप जिस वर्ग की बात कर रहे हैं उसके लिए सलाद।
1: तो मतलब घर में जितना भी अगर कैबेज है, थोड़ा सा आपके पास खीरा, टमाटर, जो भी है,
0: टमाटर पूरा पूरा, खीरा, मूली, गाजर, कैबेज,
1: कैबेज,
0: ये सारी की मात्रा दो कटोरी लिया आप खाने से
1: प्रीलोड
0: पहले
1: करना है। हाँ, 20 मिनट पहले,
0: 20 से 30 मिनट पहले लें। उसके 30 मिनट बाद ये आपने खाना शुरू किया तो उसमें रोटी चेंज कर दिया आपने। अब सब्जी कौन सी लें? अक्सर लोग कहते हैं साहब हम घिया तोरी खाते हैं। मैं कहा बिल्कुल ठीक है आप खाइए, लेकिन दो तीन चीजें और जोड़ दिया जिसका कि मायने है और उसके जो रिसर्च है वो मैंने इसमें लिखी हुई है। उसमें एक है भिंडी। भिंडी से शुगर की मात्रा कम होती है। तो एक भिंडी आप लीजिए जो शुगर के मरीजों के लिए बिल्कुल सही है। भिंडी आप हफ्ते में 3 बार लीजिए, साथ में 2 बार आप बैगन लीजिए, और अगर आप आपको मिले जो कि कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कटहल लीजिए। देखिए ये तीन चीजों के बारे में लोग जानते नहीं हैं, इन तीन चीजों के लिए बिल्कुल सही स्टडीज हैं। इसकी मात्रा ज्यादा कर दीजिए अपने खाने में, एक वेजिटेबल ये लीजिए। अब कहते हैं लोग साहब दाल क्या लें? तो दाल देखिए, दाल में छिलके वाली दाल विल गिव यू अ गुड फाइबर, बट देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, फॉर एग्जांपल चना इज वेरी गुड, एंड बेस्ट इज व्हाट वी लाइक आल्सो इज राजमा, एक्सलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर एक्सेट्रा। सो राजमा अगर आप खा सकें तो इट बी वेरी गुड। साथ में आप दही जरूर लेंगे। लोग कहते हैं दही तो आजकल बिल्कुल साहब वो डायबिटीज में तो बंद कर देते हैं। बिल्कुल बंद मत करिए। हाँ, दही को फैट की मात्रा कम रखिए दही में। तो ये आपका कंप्लीट लंच हो गया और इसी तरह से डिनर भी हो सकता है। तो आप डिनर में थोड़ा थोड़ा बदल कर आप ले सकते हैं।
1: नहीं, पर चाय भी तो आएगी बीच में।
0: चाय में आप मखाने लीजिए, कुछ आमंड लीजिए, बादाम लीजिए, या फिर आजकल ओट्स के बिस्किट वगैरह आते हैं वो भी ले सकते हैं, बट मैं उस बिस्किट को प्रेफर नहीं करता क्योंकि उसमें ट्रांस फैटी एसिड होता है। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है मखाना, भुने हुए चने और आपका आमंड्स, पिस्ताचियो।
1: आपने पूरे लंच में प्रोटीन कहीं नहीं बोला है, आपने पनीर या टोफू ऐड नहीं करा है।
0: करेक्ट। तो देखिए प्रोटीन राजमा में हमने ऐड किया है, प्रोटीन बेसन में हमने ऐड किया है, प्रोटीन दाल में है, इन सब में प्रोटीन है। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात कही, जो बेस्ट प्रोटीन है वो सोया प्रोटीन है। सोया प्रोटीन की मात्रा इतनी ज्यादा है कि वो मीट से ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली सोया प्रोटीन ज्यादा लोग पसंद नहीं करते और खाते नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि हफ्ते में 2 बार जरूर खाइए आप। और स्पेशली महिलाओं को कहता हूं जिनकी मसल बिल्कुल वो है, पतली हैं, कमजोर हैं, एल्डरली हैं, वो कमजोर हैं, उन सबको मैं ज्यादा कहता हूं कि आप इसको जरूर खाइए। और जो मीट नहीं खाते हैं, मीट तो वैसे भी हम कहते हैं कि ना खाएं, फिश नहीं खाते हैं, तो उनको प्रोटीन की मात्रा इससे मिल जाएगी और दही से भी मिलेगी। तो ये देखिए प्रोटीन के सोर्सेज हैं हमारे पास। इनफैक्ट अगर आप देखिए ना तो हमारे देश में प्रोटीन के सोर्सेज केवल 2 हैं गरीब लोगों के लिए, दाल और रोटी, यही 2 हैं प्रोटीन के सोर्सेज। तो इसमें हम थोड़ा मिला दें तो विल बी फाइन, इट विल बी होलसम फूड।
1: या डिनर पर आ जाते हैं। अब
0: डिनर में इसी तरह से अगर रोटी खाएंगे, लेकिन अगर चावल आप ऐड कर सकते हैं डिनर में तो आप ब्राउन राइस ऐड करें या पारबॉइल्ड राइस। पारबॉइल्ड राइस सीला चावल होता है,
1: सीला चावल।
0: हाँ, उसमें मतलब? उसके एक मेथड होता है प्रिपरेशन का, उसको पहले उबाल देते हैं, उसके बाद रख देते हैं, उसके बाद फिर से उबाल कर बनाते हैं। तो उसे
1: एक्सप्लेन करिएगा मुझे कैसे।
0: देखिए पहले हम उसको उबाल
1: भिगो के रखा, पहले
0: भिगो के रखा, उसको उबाल दिया, 10-15 मिनट उबाला, उसके बाद उसको रख दिया, उसको सुबह या कल आपने उसको फिर से उबाल कर जैसे राइस बनाते हैं फिर से बना दिया।
1: लाइक दैट।
0: इसमें क्या होता है,
1: ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है,
0: कम हो जाता है। तो ये अगर आप रात को लें तो राइस मैं तो प्रेफर करता हूँ कि ब्राउन राइस, बट ये

0: भी कर सकते हैं। अब क्या करें, कई लोग कहते हैं साहब राइस के बाद मेरी शुगर बड़ी बढ़ जाती है, तो मैं कहता हूँ राइस के साथ उससे थोड़ा पहले आप दाल के 3-4 चम्मच ले लीजिए प्रोटीन के, या राजमा के 3-4 चम्मच ले लीजिए, उसके बाद राइस शुरू करिए। तो ये डबल प्रीलोड हो गया, पहले प्रीलोड दिया हमने एक सैलेड का, उसके बाद प्रोटीन का प्रीलोड दिया, उसके बाद राइस खाया। तो ये जापानी स्टडी है जो उन्होंने कहा कि वेजिटेबल पहले हमने खा लिया और राइस बाद में खाया तो उसमें शुगर कम हो गई। तो ये प्रीलोड बड़ी सिंपल सी चीज है देखिए, और ये इतना ज्यादा काम, हमने इस पर रिसर्च करी हुई है, इतना बढ़िया काम करती है, 50-60 तो शुगर कम कर देती है। और देखिए जिन लोगों में इंसुलिन ही देनी पड़ती है, जैसे कि प्रेग्नेंट वेमेन है या छोटे बच्चे हैं जो टाइप 1 डायबिटीज के, उन सब में प्रीलोड काम करता है बहुत बढ़िया तरीके से। तो प्रीलोड एक नई तरह के, आप समझ लीजिए कि नई विधि है और सिंपल विधि है जो कि इस इंडिया में कोई भी
1: हो
0: कर सकता है।
1: सीक्वेंसिंग की बात जो आप कर रहे हैं ना उस पर भी मैं आऊंगी, पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डे स्वीट डिश, मीठा के बाद, मतलब खाने के बाद मीठा तो इज एब्सोल्यूट एसेंशियल इन, मैं यूपी की हूँ तो मैं आपको पूरी लाइन्स बता सकती हूँ क्या क्या चीजें खाई जाती हैं।
0: हमारी तरफ से मीठा केवल एक फ्रूट है जो कि जो भी आप फ्रूट चूज कर लें, लेकिन हमारी तरफ से बेरीज विल बी द बेस्ट फ्रूट, ब्लू बेरी विल बी अ बेस्ट फूड, और उसको अगर आप दही में मिलाकर आप खाएं तो वो थोड़ा मिठास भी आ जाएगी, और दही का और ब्लूबेरी का आपके गुण भी आ जाएंगे सारे कुछ। लेकिन फिर भी हम कहते हैं, जो कि मैं, हम कभी कहते हैं कि हम आपको कड़गरे में डालना नहीं चाहते, और हम कहेंगे ये टाइम हो गया आप डिनर लीजिए, हम चाहते हैं फ्री विलिंग, उसी में कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आपको हफ्ते में एक बार आप अगर रात को थोड़ा सा लड्डू आपको ले चाहिए, आप क्या पसंद करते हैं?
1: मैं तो चाहती हूँ कि मैं अच्छा सा बेसन का घर में बना हुआ लड्डू या आटे का लड्डू खाऊं दही के साथ।
0: दही के साथ तो मैं कहता हूँ कि सैटरडे को, सैटरडे संडे थोड़ा फ्री रखते हैं, और उसमें सैटरडे को आप ये कर लीजिए, और संडे को आप कहीं पर बाहर भी खाना भी खा लीजिए। आफ्टरऑल देखिए, फूड इज अ प्लेजर ऑफ लाइफ एंड दैट वी कैनॉट जस्ट डिनाई दिस प्लेजर ऑफ लाइफ टू एवरीबॉडी।

0: इतना अघोरी व्यक्ति इस देश में कभी पैदा नहीं हुआ राजनीति में, इतना क्रूर कभी नहीं पैदा। इस देश में पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिंह राव, राजीव गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाला साहेब ठाकरे, ऐसे बड़े बड़े महान नेता इस देश में, इस मिट्टी में जन्मे हैं। लेकिन जब मैं हम लोग मोदी का पूरा कैरेक्टर देखते हैं, मोदी जी का, तो डर लगता है ये कहां से पैदा हो गए। जिस मिट्टी से औरंगजेब पैदा हुआ उसी मिट्टी से वो लोग आए हैं। गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ था ना।
1: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है उनसे वो इतना बौखला गए हैं, इस वजह से वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। उनको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए।
2: देखिए, संजय राउत अपने ओछे व्यवहार और निम्न स्तर की भाषा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की संगत में, राहुल गांधी की संगत में उनकी शब्दावली और भी ज्यादा दूषित हो रही है और भी ज्यादा खराब हो रही है। आज मैं उद्धव सेना की बौखलाहट समझ सकता हूँ। उनकी पार्टी जो है, पार्टी के लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं। और क्यों छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को, उनके विचारों को त्याग कर तुष्टिकरण की राजनीति अपनाई। तो गलती आप करेंगे और उसके बाद जो है आप प्रधानमंत्री मोदी जी पर अपना भड़ास निकालेंगे, ये नहीं चल सकता।
3: ये इंस्पायर होते औरंगजेब, घोरी, गजनी से, इसीलिए जाकर इनको लगता है कि हर वो व्यक्ति जो देश की सेवा करता है उसको ये अब्यूज करते हैं। आज ये स्पष्ट हो चुका है, भले वो संजय राउत हो या कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी के कहने पर 140 करोड़ के देशवासियों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को गाली इसीलिए बकते हैं क्योंकि इन्होंने परिवारवादी गांधी वाड्रा परिवार को विपक्ष में बैठाया है और देश की जनता ने विपक्ष में बैठा है। आज ये स्पष्ट हो गया कि गांधी वाड्रा परिवार और उनके पूरे अलायंस पार्टनर्स, भले वो संजय राउत हो या कोई और, ये लोकतंत्र से नफरत करते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नफरत करते हैं, इंडियन स्टेट से नफरत करते हैं।
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मैं तू बता क्या खाएगी।
1: हाँ
0: तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो खाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मैं यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा।
2: A viral clip, an audience interaction, and a massive wave of public backlash. Caught in the crossfire of a double-barreled controversy, comedian Praneeth More is trying to rewrite the script. After a massive online backlash, the stand-up artist has issued a formal apology, discovering the hard way that when you compromise on consent for a quick laugh, the consequences will pull you off the stage.
3: आप सब ने मेरे crowd work का video देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफी hate मिल रही है, और मुझे ऐसे लगता है ये hate मैं deserve भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं crowd work कर रहा था, उसने काफी derogatory चीजें बोली, जिनको भी इस वजह से hurt हुआ है। उन सबसे मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैं आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊंगा।
2: The heat began in Gurugram, where a crowd work session with Himanshu Jangra spiraled into a toxic debate over the infamous 370 rupees biryani remark. Accused of platforming sexist rhetoric, the comedian was forced to address the storm head on as the footage triggered a national outcry.
0: वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मैं तू बता क्या खाएगी।
1: हाँ
0: तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो खाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मैं यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा।
4: तुझे तो ये भी लगा था वो तुझसे प्यार करेगा।
2: But the controversy is not isolated. An earlier crowd work clip from Praneeth More's another show has also resurfaced, drawing sharp criticism and even political reactions. In that instance, audience member Dr. Sejal Pawar's remarks about male cadavers during an interaction sparked outrage, with Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis stating that freedom of expression cannot justify offensive or degrading comments. She has also been placed on 15-day forced leave and barred from entering the college campus and hostel during this period, and has been handed over to her family. A 5-member committee will submit its report within 7 days into the matter.

0: Thank you, Your Excellency, for your inspiring address and for sharing your vision for deepening the partnership between India and France. It is now our distinct honor to invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to deliver the keynote address.
1: Your Excellency, my dear friend, President Macron, VCs, industry leaders, and innovators, bonjour, namaste. Bharat Innovates mein shamil sabhi saathiyon ka main abhinandan karta hoon. और इस कार्यक्रम के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. साथियों, दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं. अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं. भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है. इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है. इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है. इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है. और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है. चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, एआई से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी साझेदारी हो, यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना, हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं. इसी साल फरवरी में ही इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत हुई है और आज हमें बहुत खुशी है कि भारत इनोवेट्स की शुरुआत भी हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं. मैं अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो का इस अवसर पर यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. प्रेसिडेंट मैक्रो अभी भारत यात्रा के दौरान आपने कहा था कि इस सदी की चुनौतियों के समाधान के लिए भारत और फ्रांस को एक साथ आगे आना होगा. आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इनिशिएटिव उसी दिशा में एक कदम है. भारत इनोवेट्स का ये मंच भारत के टैलेंट और यूरोपियन कैपिटल के बीच एक ब्रिज बन रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां भारत के यंग माइंड्स को यूरोपियन एक्सपर्टीज से जुड़ने का अवसर मिल रहा है. साथियों, आज 21वीं सदी का भारत बदलाव के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है. आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है. इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स। आईआईटी दिल्ली के बोर्ड के चेयरपर्सन मेरे मित्र हरीश साल्वे जी ने इसके आयोजन में बड़ा योगदान दिया है और इसके लिए मैं उन्हें और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां इतनी बड़ी संख्या में यंग एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं, आपको यहां भारत के भविष्य की झलक दिखाई देती है, आपको भारत के युवाओं का आत्मविश्वास दिखाई देता है, आपको नए भारत की ऊर्जा दिखाई देती है। एक ऐसा भारत जो सॉल्यूशंस का कंज्यूमर नहीं, सॉल्यूशंस का कंट्रीब्यूटर बनकर के उभरा है। यहां कोई एआई से गांवों का जीवन बदलने के लिए काम कर रहा है, कोई किसानों की मदद के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ युवा स्मार्ट सिटीज, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और नए मटेरियल से भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, कोई ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बैटरी टेक्नोलॉजी से एक सस्टेनेबल फ्यूचर सुनिश्चित कर रहा है, और कुछ स्टार्टअप्स डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं। आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत इनोवेट्स विद स्केल एंड स्पीड, भारत इनोवेट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एंड भारत इनोवेट फॉर द होल वर्ल्ड। साथियों, आज बहुत सारे वीसीज और इंडस्ट्रियल लीडर्स भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। मैं उनके सामने विशेष तौर पर भारत से आए इन नौजवान साथियों की प्रशंसा करूंगा। यहां जितने भी साथी आए हैं, उन्होंने पुराने रास्ते पर चलने की बजाय उसको छोड़ करके उन्होंने एक नई जगह का रास्ता चुना है, एक नई लीक बनाई है, और यहां आप सबको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है, और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथियों, दुनिया के लिए ये डेकेड डिसरप्शन और डेवलपमेंट दोनों का है। संघर्षों और क्लाइमेट चेंज के बढ़ते प्रभाव के बीच विश्व एक अभूतपूर्व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, लेकिन आज

जो इंक्लूसिव हो, जो ह्यूमन सेंट्रिक हो और जिसका लक्ष्य ग्लोबल गुड का हो। और ऐसे समय में भारत की प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन। साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है, यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है, हमारे एआई विजन का भी मूल तत्व है, एआई फॉर ऑल। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट की थीम भी यही थी। साथियों, भारत ने दिखाया है कि इनोवेशन और इंक्लूजन एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक है। इसका मतलब है किसी भी इनोवेशन की महानता केवल उसके वैल्यूएशन में नहीं होती, उसकी महानता उसके ह्यूमन इंपैक्ट में होती है। यही भारत इनोवेट्स की भावना है, यही भारत का दृष्टिकोण है। यहां मौजूद स्टार्टअप जगत के साथ आप सभी साथियों के लिए भी ये उतनी ही बड़ी प्रेरणा है। फ्रेंड्स, इनोवेशन इज इन इंडिया डीएनए। हजारों वर्षों से भारत ने अपने नॉलेज और इनोवेशन से दुनिया को नई दिशा दी है। मैथमेटिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, मेडिसिन से लेकर के योगा तक, भारत का योगदान संपूर्ण मानवता की प्रगति का आधार रहा है। आज हमने इसी विरासत को नई गति और नई दिशा दी है। साथियों, बीते 11-12 वर्षों में भारत ने इनोवेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। पेटेंट फाइलिंग से लेकर इंक्यूबेशन नेटवर्क तक, स्टार्टअप इंडिया से लेकर पॉलिसी सपोर्ट तक, ये पूरी जर्नी एक मिशन मोड में आगे बढ़ी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन हमारी सोच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। हमने इनोवेशन को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने का काम किया है। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाए गए हैं, युवाओं को हैकेथॉन्स और इनोवेशन चैलेंजेस से जोड़ा जा रहा है। पूरे देश में इंक्यूबेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का विस्तार किया जा रहा है और स्पेशली विमेन इनोवेटर्स को हम ढेर सारी नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। इन सब के कारण भारत में बहुत बड़ी मात्रा में चेंज हुआ है। आज ड्रोन दीदी से लेकर स्टार्टअप के फाउंडर बनने तक हमारी विमेन पावर नई सक्सेस स्टोरीज लिख रही है। साथियों, नौजवानों की इसी एनर्जी को और आगे बढ़ाने के लिए भारत के डिफेंस सेक्टर को भी इनोवेशन के लिए खोला गया है। आज डिफेंस और स्पेस, इससे जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप्स

नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन विद इंडिया। मैं अगले तीन दिनों में आपके सेशंस और डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम पार्टनरशिप चाहते हैं, हम को डेवलपमेंट चाहते हैं, हम जॉइंट रिसर्च चाहते हैं, हम शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं और हम लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहते हैं। मैं आज यहां मौजूद हर इन्वेस्टर, हर यूनिवर्सिटी और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं। आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए।

साथियों, दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है। चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, एआई से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी साझेदारी हो, यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना, हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं। इसी साल फरवरी में ही इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत हुई है और आज हमें बहुत खुशी है कि भारत इनोवेट्स की शुरुआत भी हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं। मैं अपने

0: Welcome back, viewers. At the very top of this segment, we're taking you through breaking news coming in right from Nice. It's a nice, true partnership message that has now come in from the French President Emmanuel Macron. Modi-Macron bilateral in France. Now we see key Modi-Macron huddle that's underway. But before that, we see this post being made by Macron, which he has in fact come out to caption as a nice selfie. So yes, two leaders in one frame in Nice, quite the wordplay done by the President of France, as we see. And these are the latest images and the post that we are bringing to you on our broadcast at this very given point. The latest development from that six-day tour, Europe tour, that the Prime Minister has embarked upon, his first stop being Nice in France. On that very note, we're wrapping up the bulletin this hour, but do stay tuned as we come back quickly after this break, bring you all the top stories off to the next hour right here. Thank you for tuning in.
1: You are watching India Today.
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
6: आज हमने इसी विरासत को नई गति और नई दिशा दी है. साथियों, बीते 11-12 वर्षों में भारत ने इनोवेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है. पेटेंट फाइलिंग से लेकर इंक्यूबेशन नेटवर्क तक, स्टार्टअप इंडिया से लेकर पॉलिसी सपोर्ट तक, ये पूरी जर्नी एक मिशन मोड में आगे बढ़ी है. आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है. लेकिन हमारी सोच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. हमने इनोवेशन को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने का काम किया है. स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए गए हैं. युवाओं को हैकेथॉन्स और इनोवेशन चैलेंजेस से जोड़ा जा रहा है. पूरे देश में इंक्यूबेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का विस्तार किया जा रहा है और स्पेशली विमेन इनोवेटर्स को हम ढेर सारी नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं. इन सब के कारण भारत में बहुत बड़ी मात्रा में चेंज हुआ है. आज ड्रोन दीदी से लेकर स्टार्टअप के फाउंडर बनने तक हमारी विमेन पावर नई सक्सेस स्टोरीज लिख रही है. साथियों, नौजवानों की इसी एनर्जी को और आगे बढ़ाने के लिए भारत के डिफेंस सेक्टर को भी इनोवेशन के लिए खोला गया है.
1: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे.

0: So, dear Prime Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action or the strengths of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here.
1: For Charu Pandey, cracking government recruitment exams has almost become a short of hobby. The mathematics graduate from Chhattisgarh has cleared 19 exams so far. These include SSC, banking, railway and state government recruitments.
2: SSC CGL है, CHSL है, MTS है, मतलब ये सब पैटर्न तो एक ही फॉलो करते हैं, बस सिलेबस कम ज्यादा होती थी तो मैं सारा फॉर्म डालते गई. किसी का रिजल्ट पहले आता था, किसी का रिजल्ट लेट आता था.
1: चारू अचीव दिस फीट विदाउट एनरोलिंग इन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट.
2: हम लोग दिन भर पूरी टाइम पढ़ाई तो नहीं कर सकते. हाँ. हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा दूसरा मतलब माइंड चेंज करने के लिए काम करेंगे. हाँ, हाँ. तो मैं वो माइंड चेंज करने के लिए मैं ट्यूशंस लेती थी क्योंकि मुझे टीचिंग पे बहुत इंटरेस्ट था.
1: शी यूज डिजिटल रिसोर्सेज एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग हर प्रेपरेशन.
2: मैं यूट्यूब से पढ़ाई करती थी, इंस्टा पे रील्स डालते थे टीचर्स. हाँ. तो वहां से मैं उनसे कुछ कुछ सीख के ऐसा पूरा मैनेज करती थी. बस मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने. हाँ, हाँ. बस उस पर मैं टेस्ट देती थी.
1: Charu has two tips for those appearing in exams: time management and positive thinking. With Sumi Rajapan, Bureau Report, India Today.

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजीज और एडवांस मटेरियल्स, ये सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है और हर अवसर एक नई जिम्मेदारी भी लेकर आता है। आज दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजीज की ओर देख रही है जो ट्रस्टेड हो, जो इंक्लूसिव हो, जो ह्यूमन सेंट्रिक हो और जिसका लक्ष्य ग्लोबल गुड का हो। और ऐसे समय में भारत की प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन। साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है, यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है। हमारे एआई विजन का भी मूल तत्व है एआई फॉर ऑल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट की थीम भी यही थी। साथियों, भारत ने दिखाया है कि इनोवेशन और इंक्लूजन एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक है। इसका मतलब है किसी भी इनोवेशन की महानता केवल उसके वैल्यूएशन में नहीं होती, उसकी महानता उसके ह्यूमन इंपैक्ट में होती है। यही भारत इनोवेट्स की भावना है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

साथियों, दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है। चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, एआई से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी साझेदारी हो, यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना, हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं। इसी साल फरवरी में ही इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत हुई है और आज हमें बहुत खुशी है कि भारत इनोवेट्स की शुरुआत भी हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं। मैं अपने

आपको भारत के युवाओं का आत्मविश्वास दिखाई देता है, आपको नए भारत की ऊर्जा दिखाई देती है। एक ऐसा भारत जो सॉल्यूशंस का कंज्यूमर नहीं, सॉल्यूशंस का कंट्रीब्यूटर बनकर के उभरा है। यहां कोई एआई से गांवों का जीवन बदलने के लिए काम कर रहा है, कोई किसानों की मदद के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ युवा स्मार्ट सिटीज, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और नए मटेरियल से भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, कोई ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बैटरी टेक्नोलॉजी से एक सस्टेनेबल फ्यूचर सुनिश्चित कर रहा है, और कुछ स्टार्टअप्स डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं। आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत इनोवेट्स विथ स्केल एंड स्पीड, भारत इनोवेट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एंड भारत इनोवेट फॉर द होल वर्ल्ड। साथियों, आज बहुत सारे वीसीज और इंडस्ट्रियल लीडर्स भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। मैं उनके सामने विशेष तौर पर भारत से आए इन नौजवान साथियों की प्रशंसा करूंगा। यहां जितने भी साथी आए हैं, उन्होंने पुराने रास्ते पर चलने की बजाय उसको छोड़ करके उन्होंने एक नई जगह का रास्ता चुना है, एक नई लीक बनाई है। और यहां आप सबको 100 सवा 100 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है। और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।

साथियों, आज यहां इतनी बड़ी संख्या में यंग एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं, आपको यहां भारत के भविष्य की झलक दिखाई देती है।

0: Lifestyle, health, and science, or anything else. Stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
1: इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है. इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है. इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है. और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है. चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, एआई से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी साझेदारी हो, यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना, हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं. इसी साल फरवरी में ही इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत हुई है और आज हमें बहुत खुशी है कि भारत इनोवेट्स की शुरुआत भी हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं. मैं अपने

0: आज डिफेंस और स्पेस इससे जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप्स भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए हैं। इससे क्लीन एनर्जी, एडवांस रिएक्टर्स और फ्रंटियर रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनने जा रही है। यह रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी और भारत से निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी। फ्रेंड्स, एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी, आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है और भारत जो भी इनोवेट करता है, जो भी सॉल्यूशन देता है, उसका फायदा ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है।
1: We didn't buy significant amount of Russian oil till 2022. Circumstances compelled us to get into that market. And I must say, the Russians have been steady suppliers because they put the cargoes out there and you go out there and buy oil, whichever is the most reasonable and available oil. But I do want people to remember this. At that time, the US specifically asked India to buy Russian oil to stabilize the world markets.
2: Yeah.
1: Okay? Right now,
2: yeah.
1: If you see, after having first put tariffs on us last year for buying Russian oil, the U.S. then again lifted its sanctions
2: because
1: on Russian oil.
2: They need the oil price down again. Yeah.
1: So let's not pretend that there is some great principle involved here. I mean, if it is on, off, and, you know, do it when it suits us and don't do it when it doesn't suit us. I mean, come on. We are all the adults in the room. We know what the game is. So I don't think making this about sanctimony is really warranted.

0: Yo bien pienso que los demás se han cambiado. El día de los pepiados y son chunchunque. Data de carne que cambian los superpiados. Para justicia, para chagar los mortipos.
1: एक नॉर्थ कलकत्ता का सीनियर लीडर भी दिल्ली में घूम रहा है, कोई नहीं है बचा, सब खत्म, पूरा खत्म हुआ, सब हो गया है। इतना घमंड, इतना अत्याचार, पुलिस को देकर और गुंडा को लेकर ये राज्य को बर्बाद करने वाला तुष्टिकरण, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी एक शक्ति को बंगाल की जनता को उखाड़ फेंकी है। 7 साल 1 महीने के अंदर उनका पार्टी भी बर्बाद हो गया है। जो सनातनी को गाली देता है, जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलता है, जो राम मंदिर के खिलाफ जुलूस निकलता है, वो ये धराधाम में बहुत ज्यादा दिन तक उनका राज नहीं चलता है।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Today's jazz brings the movement forward. Modern voices, contemporary sound, and players shaping what jazz sounds like now. From Herbie Hancock to Pat Metheny, Esperanza Spalding, and more. Feel the jazzy energy with Deep Roots. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Jazz to start listening now.
1: के फ्यूचर को शेप करेंगे, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है और हर अवसर एक नई जिम्मेदारी भी लेकर आता है। आज दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजीज की ओर देख रही है जो ट्रस्टेड हो, जो इंक्लूसिव हो, जो ह्यूमन सेंट्रिक हो और जिसका लक्ष्य ग्लोबल गुड का हो। और ऐसे समय में भारत की प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन। साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है, यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है। हमारे एआई विजन का भी मूल तत्व है एआई फॉर ऑल, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट की थीम भी यही थी। साथियों, भारत ने दिखाया है कि इनोवेशन और इंक्लूजन एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक है। इसका मतलब है किसी भी इनोवेशन की महानता केवल उसके वैल्यूएशन में नहीं होती, उसकी महानता उसके ह्यूमन इंपैक्ट में होती है। यही भारत इनोवेट्स की भावना है।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: mere 32 seconds, and that altered life forever. For survivors, for family members, who are left to trace the last remains of their loved ones. And as life moved on in its own pace, those fatal 32 seconds on air of AI-171 has got frozen in a time bubble for most of these people. After spending many years in London, Bhavesh Modi came back to Ahmedabad to live with his mother and sister. He was on his way back to London on 12th June 2025. Within a minute of takeoff, his sister Sunita and his nephew and niece were trying to trace his last remains.
1: जब पता चला उसके बाद से लेके अभी तक जैसे डिप्रेशन में ही चल रहा हूँ ना ऐसा ही चल रहा है एक साल पूरा ऐसे ही गया है मैं छह महीना तो रात सोई ही नहीं बिल्कुल नींद ही नहीं आती नींद की गोली भी मेरे लिए मतलब काम नहीं कर रही हूँ ना ऐसा है छह महीने तो मैंने मुश्किल से निकाले मेरा भाई था वो मतलब मेरा सहारा ही था मैंने मेरी शादी हुई पर मेरे हस्बैंड इतना मतलब कोई इतना है कमाते भी नहीं है तो उसी के सहारे मेरे बच्चों को भी उसने ही बड़ा किया है

दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है। चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, एआई से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी साझेदारी हो, यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना, हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं। इसी साल फरवरी में ही इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत हुई है और आज हमें बहुत खुशी है कि भारत इनोवेट्स की शुरुआत भी हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं। मैं अपने

0: If catastrophe had a picture, it would be this. As I have walked in over the last 1 kilometer, all I have seen, and I will show you, in time, there are fires which are still being put out, and this is the tail end of the aircraft, of what you can see on the crash landing of AI-171 London bound. I want to immediately try and get our viewers a sense in terms of what really happened. I have a nurse, because this was a hostel for medical students. I have a staff nurse who works at the
1: Ashrayam quarters.
0: She lives at the Ashrayam quarters, which is right next to this particular hostel. And ma'am, sabse pehle apna naam bataye.
1: मेरा नाम है आरती साधु. मैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल में काम करती हूँ. आई डिपार्टमेंट में हूँ. हाँ, तो हम सो रहे थे तो एक धड़ाका हुआ, तो हमने देखा तो बाहर निकले तो सब धुआं धुआं धुआं और आग फैली हुई थी चारों तरफ. सब आग कुछ दिखता ही नहीं था, बस धुआं ही धुआं दिखता था.
0: I'm standing at the crash site, and this was the cockpit side, the front of the plane, and then if you go all the way back, you can see the tail end as well. And what you can actually see is a visual of absolute catastrophe. The tragedy and the scale of it can be counted, viewers, if you look at the strewn clothes, medicine, slippers. I saw a watch of all the passengers who were on board. This was the business class section, and those who have been standing here tell us that this is where most, and probably Mr. Rupani, the first class section and the business class section, bodies were pulled out. I have with me, sir, kya naam hai aapka?
2: Nitin Shah.
0: Aap RSS se hain?
2: Ji.
0: Yahan pe subah se hain?
2: हाँ, जब से
0: दोपहर, मतलब
2: यहाँ पे तो पूरा फायर था. नियर अबाउट 4 o'clock तक पूरा यहाँ पे आने जैसा जगह नहीं था. एक्चुअली जो हुआ ना, लास्ट में जो बिल्डिंग है ना, लास्ट वहाँ पे टेल, हाँ, वो थोड़ा हुआ था और उसकी वजह से पूरा यहाँ पे आके लैंड हो गया. बाकी लगभग कोई नहीं बचा है.
0: तो आपने मदद किया एक एक
2: जी? हाँ, एक्चुअली जिस टाइम हम आए थे उस टाइम पर तो ऐसा था कि पूरा जो भी बॉडी वगैरह था पूरा ब्लेंड था, तो काफी दिक्कत भी हुई. 4 से 5 बॉडी तो हमने भी हाथ से लगाकर भेजा था यहाँ पे से. और इनिशियली स्टाफ वगैरह गवर्नमेंट का जो भी आया, उसके पहले कई ऑटो रिक्शा वाले, कई प्राइवेट टैक्सी वगैरह वाले, उन्होंने भी सपोर्ट किया. वो भी यहाँ से बॉडी को लेके गए थे.
0: इट्स ओवर अ कोर्स ऑफ अबाउट 600 मीटर्स. दिस बिल्डिंग राइट देयर कंप्लीटली चार्ड. देयर स्मोक स्टिल बेलोइंग फ्रॉम वन ऑफ द फ्लोर्स. आई आस्क संजय टू एक्चुअली जीरो इन देयर. एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक फॉर अबाउट 300 मीटर्स. दिस इज लाइक आई सेड द मेस एरिया. ब्रिक मोर्टर रिमेन्स ऑफ द aircraft, the debris, mattresses, and broken dreams of young lives who wanted to make it big. All sitting, eating lunch, not knowing that a plane is going to ram into their building. That's the wheel of the aircraft. That's the tail end of the body. You can actually see a part of the Maharaja Air India's logo right there. Mattresses of students' rooms, their beds there, and bloodstains. And this was the mess. Sanjay will just show you, this was the mess. And this is all but destroyed. And this is where the young students were sitting there grabbing lunch. You know, this is heartbreaking. Clearly somebody was eating his meal right here. And I can, you know, I've counted the number of thalis, that more than 25. This is where they were sitting. Sanjay, just turn around. I'll ask Sanjay, and then you can get a view of how the aircraft actually slammed into this building. That is what I showed you right there. That's the tail end of that aircraft. This is the, you know, the tables, the benches. And you can see their meal uneaten right here. आपका पूरा टीम कितना एम्बुलेंस के साथ आया?
3: शायद पांच मिनट में तो ज्यादा से ज्यादा सब 105 आ गई थी यहाँ पे। मेघारी नगर आई थी, चमनपुरा और ये चामुंडा ब्रिज।
4: तो आपका कॉल नहीं आया था, जस्ट लोग हम खाना खा रहे थे, हमारे यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे हमारी ऑफिस है, 1200 बेड हॉस्पिटल, 1200 बेड यहाँ से 200 मीटर दूर है, 1200 बेड कैंप सिविल हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे हम खाना खा रहे थे, मतलब खाना खाने बैठे थे, टिफिन हमारे सब खोल दिया था, जैसे हमने खोला सब ब्लास्ट हुआ, बहुत तरह धुआं और आग निकलने। तो वहाँ से हम खाना छोड़ के, नहीं कॉल नहीं आया था, कॉल नहीं आया था, सीधा हम सर्वाई के लिए चले गए।
3: मेरा पे कॉल आया था, मेरे चामुंडा ब्रिज को कॉल आया था, ज्यादा से ज्यादा में पहुंच गया था, 5-7 मिनट में यहाँ पे पहुंच गया था।
0: कितने लोगों को रेस्क्यू किया?
5: मैंने मैडम 3-4 जिंदा बंदी को ले गया, और
0: जो लेके गए वो स्टूडेंट था, हॉस्टल से लेके गए या मेस से?
5: बाहर से जैसे बोला थे हम,
0: कैसे लेके गए आप उनको? लेते स्टूडेंट्स थे सर?
5: नहीं स्टूडेंट नहीं, यहाँ से लेके स्टूडेंट ही सर।
0: और कितना लोग लेके गए यहाँ से?
5: लगभग 3-4 आदमी जिंदा लेके गए और बॉडीज भी लेके गए।
0: So basically, over 150 families have already come in. They've given their DNA samples to be matched with the bodies that have brought in. I was speaking to the lady there. She's a staffer here at the civil hospital. And what she says is that in their entire list of that they have, there is only one person who's not in, and that's the name of the survivor.
6: Basically, state government has, after this incident, made an order of 4 IS officers to look in various capacities. So I'm looking after this DNA sampling exercise that we are doing here.
0: Ronit, आप local हैं?
7: हाँ, यहाँ मैं local रहता हूँ, पास में मेरा घर है। जब ब्लास्ट हुआ तो मैं बैठा था, खाना वाना खा रहा था, और निकले हम लोग तुरंत ही, तो हम लोग ब्लास्ट की जगह पे पहुंचे। वहां पे प्लेन क्रैश हुआ था, किसी को अलाउड नहीं कर रहे थे अंदर जाना, तो मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स हम लोग मिलके हम लोग यहां पे जो पीएम रूम है वहां पे पहुंचे। वहां मनीष सुतरिया साहब है जो हेड है, वो मेरे वहां पे, वो अकेले और कुछ स्टाफ वाले काम कर रहे थे, बॉडीज आ रही थी, फिर हम लोगों ने सबने मिलके वहां पे बॉडीज को उठाया, फिर ये रूम पूरा पीएम रूम पैक हो गया था, इतनी बॉडीज थी।
0: पोस्टमार्टम रूम पूरा
7: पैक हो गया, जो फ्रोजन एरिया था वहां पे भी बॉडीज थी, जो पीछे का बैक साइड का है, जो सामने बैक साइड का फ्रोजन एरिया वो भी पैक हो गया। फिर उन लोगों ने हमको बोला कि आप लोग थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, तो अब बॉडीज को आगे ट्रोमा सेंटर, जो पुराना ट्रोमा सेंटर था, वहां पे ले जाइए। फिर हम लोग वहां पे लेके गए ट्रोमा सेंटर को, और ट्रोमा सेंटर में से जितनी वहां पे से, क्योंकि एम्बुलेंस आ रही थी, हमने सारी एम्बुलेंस को वहां पे रोका और वहां से हम लोग ने बॉडीज को अंदर रवाना किया।
8: मेरे पापा की क्या गलती थी जो इसमें बैठे थे? ऐसे से आप नींद खरीद सकते हो गोरी, मेरे सबसे नींद कैसे आएगी? एक करो मैं युद्ध तो देती हूँ, मुझे मेरा पापा, मुझे पापा वापस लाइए को बोलो, एक करो मैं दूंगी, मेरा पापा मुझे वापस करो। अब किस हिसाब से ही मेरे पापा गए है ना, आपको चेक करना था, पहले क्यों नहीं चेक किया? वो ऐसे हंसने के शिकार बनते हैं लोग, और ये एक करोड़ में खड़ी दोगी मेरे पापा को, आप क्या मजाक बना के लगते हो? एयर इंडिया वाले कुछ सुनते नहीं है, एयर इंडिया वाले एक करोड़ देंगे क्या, एक करोड़ देंगे वो, मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस कीजिए, मेरी मदर भी वहां थी, मुझे वापस कीजिए, 2 करोड़ मैं दूंगी आपको, चैलेंज पार्टी हूँ मैं एयर इंडिया वाले को, क्या मजाक बना के लगते हो आप किसी जान को?
0: That's what heartbreak looks like, that's what heartbreak sounds like. Falguni, right there, has lost her father. She wants to give 2 crores. She wants to give 2 crores to Air India to get her father back. Her mother, her father, gone.

0: The story very quickly shifted from the accident site to the hospitals where the victims were taken in. Some of them in complete charred conditions, body parts. And with it came a flood of relatives in disbelief. Empathy for a television journalist is easier said than done. Very difficult to document grief, painstaking to document grief. How do you draw that boundary and yet respect people whose lives forever have turned upside down? Families of victims, one survivor, that was confirmed. That, to me, as a journalist, was the hardest part, because I remember me and my camera person stayed the course of the night at the hospital. Every 20 minutes, you would see a loved one walk in, a family walk in. Those who lived near came in quicker. Those who came in from other cities, some of them were flying in from London. And for the next 48 hours, to hold that grief in, to document that grief, has been, after COVID, my toughest assignment.
1: Mere 32 seconds, and that altered life forever. For survivors, for family members, who are left to trace the last remains of their loved ones. And as life moved on in its own pace, those fatal 32 seconds on air of AI-171 has got frozen in a time bubble for most of these people. After spending many years in London, Bhavesh Modi came back to Ahmedabad to live with his mother and sister. He was on his way back to London on 12th June, 2025. Within a minute of takeoff, his sister Sunita and his nephew and niece were trying to trace his last remains.
2: जब पता चला उसके बाद से लेके अभी तक जैसे डिप्रेशन में ही चल रहा हूँ ऐसा ही चल रहा है एक साल पूरा ऐसे ही गया है मैं 6 महीना तो रात सोई ही नहीं बिल्कुल नींद ही नहीं आती नींद की गोली भी मेरे लिए मतलब काम नहीं कर रही हूँ ऐसा है 6 महीने तो मैंने मुश्किल से निकाले मेरा भाई था वो मतलब मेरा सहारा ही था मैंने मेरी शादी हुई पर मेरे हस्बैंड इतना मतलब कोई इतना है कमाते भी नहीं है तो उसी के सहारे है मेरे बच्चों को भी उसने ही बड़ा किया है
1: रोमिल वोहरा हैड जस्ट बेड गुडबाय टू हिज ब्रदर परवेज वोहरा and his 5-year-old daughter on 12th June 2025. When the news flash of the crash on his mobile phone shook the ground beneath his feet.
3: अहमदाबाद से 20 किलोमीटर डिस्टेंस में अहमदाबाद ही पहुंचा था 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है अहमदाबाद से फिर मैं इमीडिएट वहां से जाने के लिए वहां वापस रिटर्न जाने के लिए निकल गया अराउंड 15-17 मिनट में मैंने 20 किलोमीटर का फासला सिग्नल सब तोड़ के अहमदाबाद सिविल पहुंचा था मैं सब वहां 12 जून को सब हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद भी मैंने सब वार्ड में ढूंढा है गुरुवार के दिन रात को अप्रॉक्स 9-10 बजे के तकरीबन हमको पता चल गया था कि सभी के सभी मेंबर डेथ हो चुके हैं क्योंकि अनाउंस हो गया था कि जिसके भी मेंबर हॉस्पिटलाइज फ्लाइट के अंदर थे उनको DNA सैंपल देना है
1: परवेज बोहरा हैड अनदर डॉटर and his wife was pregnant at the time of the accident. They were in London. Parvez's wife and elder daughter came hoping he and his younger daughter were alive.
3: My family's health is completely broken. Everything has fallen apart. Health conscious, mentally disappointed, everything has fallen apart. And my brother's death, after 20 days, मेरे ब्रदर का एक बेबी बॉय बॉर्न हुआ जो उसकी ड्रीम थी कि ऊपर वाला, उससे ऑलरेडी उसको दो बेटियां थी, उसमें से एक बेटी चली गई, दो बेटियों के बाद उसके एक बेटे की ख्वाहिश थी जो ऊपर वाले ने पूरी की, लेकिन भाई उसको देखने के लिए नहीं रहा। और जो बेटा है जिसका नाम अब्दुल्ला है, वो भी अपने बाप को अब कभी भी देख नहीं पाएगा।
1: There were 14 people from Diu in that flight. No one survived. Faizan was one of them. He had come back from London on a vacation and got married days before the accident.
4: 6 जून को वहां से निकला था, यूके से। मैं इधर था, मेरी मम्मी गुजर गई तो मैं इधर था, इसके नानी माँ के पास था, रजा लेके आया था। नानी माँ मना कर रही, बेटा अभी नहीं जाना, इस साल की अभी ईद गए ना, अभी ईद में जाना था। नहीं, मेरे जाना है, मेरे वहाँ मेरे माँ के नाम की उजी करनी है ना, मेरे घर वाले के साथ शादी में एंजॉय करना है। तो बाद 10 दिन के 8 दिन की छुट्टी लेके आया था, वहाँ छुट्टी नहीं मिलती थी।
1: Former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani was going to London on 12th June 2025 to spend time with his daughter.
5: एक पिता के खोने का दुख, मतलब शब्दों में तो बयां नहीं कर सकते, परंतु मैं ये बता सकता हूं कि एक मार्गदर्शक, एक पथदर्शक और एक मेंटोर का लॉस जो है वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ये काफी बड़ा है।
6: 12 जून 2025 वाज द डे व्हिच शुक द एंटायर वर्ल्ड, द हॉरिबल डे फॉर द मोर देन 200 फैमिलीज हु लॉस्ट देयर close ones, near and dear ones. We are at the site after a year. This is the situation of the site which still gives the shows the pain and the grief of the family, how the damage was done.
1: There was one miraculous survivor. British citizen Vishwas Kumar Ramesh was seated next to an emergency exit in seat 11A. He escaped through a breach in the fuselage, while everyone, including his brother, perished. With Brijesh Doshi in Ahmedabad, Bureau Report, India Today.
0: As we reported, we figured that this would be the deadliest civil aviation disaster globally in the 2020s and the first fatal hull loss of a Boeing 787 Dreamliner. Big questions started rolling in. What happened in those 32 seconds of IC-171? And honestly, it was the most difficult one to track. The recovery of the black box data didn't conclusively prove what was at fault. Was it technical? Was it human error? The investigation has now reached the court. The final comprehensive AAIB report is still pending. The loved ones of those on board IC-171 still have no answers.

0: The TMC rebellion has taken a major turn. We're shifting our focus to the domestic arena now. The breakaway faction has formally split from the party and announced a new political alignment. Rebel MP Kakoli Ghosh Dostidar announced that the faction is merging with the NCPI and will support the NDA. She also claimed that 20 rebel MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla and sought permission to sit separately. Senior leader Shrudeep Bondopadhyay confirmed the merger, saying the group has joined the NCPI and that the courts will decide who represents the real TMC indeed. The announcement came after rebel MPs met Speaker Om Birla and Union Minister Bhupendra Yadav. The Mamta camp hit back strongly. TMC MLA Madhun Mitro accused the rebels of winning on Mamta Banerjee's name, called their actions unfair and claimed they do not have the numbers. He said any decision on moving court would be taken by Mamta Banerjee.
1: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
2: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ
3: कहाँ की पार्टी है दादा
4: डाउन करो ना दादा
2: एक पॉलिटिकल पार्टी है
4: डाउन है डाउन
2: और रिकॉग्नाइज कोई रीजनल पार्टी है तो वो पार्टी के साथ हम लोग मार्च हुआ
3: टीएमसी रहेगी वो अलग है
2: वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड
3: होगा क्लेम करेंगे
5: इससे मिला हम लोग क्या नाम है स्पीकर से उनको चिट्ठी दे दिया है ब्लॉक मांगा है ब्लॉक हमको मिल जाएगा पार्टी के बीच मिल जाएगा वेरी नाइस डिस्कशन विथ हिम एंड वेरी सक्सेसफुल बहुत अच्छा है ऑल द 20 मेंबर्स आर विद देयर वी वांट टू सी अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल नया जो खेला शुरू हुआ है जी हम ज्वाइंट गवर्नमेंट मीन्स हमारा डबल इंजन का सरकार एक साथ मिलके कंधा में कंधा मिला के काम करने चाहता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ये देखना बहुत जरूरी है पब्लिक ही चाहता है ना वी आर गोइंग टू बी सक्सेस बीजेपी हमको मदद मांगेगा हम देगा मदद
6: फर्स्ट आई स्ट्रांगली कंडेम दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं आई स्ट्रांगली कंडेम देयर एटीट्यूड बिकॉज दे ओन द इलेक्शन बाय यूजिंग द फोटो एंड नेम ऑफ ममता बनर्जी एंड तृणमूल कांग्रेस सो दिस इज बेसिकली अ ट्रेचरी प्रेशर कांट बी लाइक दैट द 2022 एमपी शुड गो समथिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड गहरा है दाल में कुछ काला है
0: The Trinamool Congress has taken its battle against rebel MPs directly to the Lok Sabha Speaker. As Mamata Banerjee's party moves to prevent any breakaway faction from gaining official recognition. In a key development, TMC MPs Kirti Azad and Shagurika Ghosh visited Lok Sabha Speaker Om Birla's residence and submitted a letter from Abhishek Banerjee. In the letter, Abhishek Banerjee urged the Speaker not to grant recognition facilities or separate status to any rebel group. Citing the anti-defection law, he argued that political splits no longer enjoy legal protection and warned that MPs attempting to function as a separate faction could face disqualification. The TMC leader also requested that the party's official leadership be heard before any claim by a rebel group is considered in what is being seen as Mamata Banerjee's latest bid to contain the very rebellion.
7: सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लेंच में ये कहा गया है शेड्यूल 10 के 4 अनुच्छेद में कहा गया है, कोई स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है, जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है, उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे, वो आवेदन हमने दे दिया है माननीय स्पीकर को। और हमको पूरा विश्वास है कि कानून के अंतर्गत ही जैसा काम करते रहे स्पीकर वैसे करेंगे।
8: हमने चिट्ठी दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान इसको अलाउ नहीं करता है, ये संविधान के विपरीत है, ये कानून के विपरीत है।
9: मुलाकात हुई कि नहीं हुई?
8: इस तरह से आप अपनी नैतिक कमजोरी दिखा रहे हैं कि जब पार्टी हार जाती है, जिस चिन्ह के तले आप जीत कर आए हैं, जिस लीडर के फोटो के नीचे आप जीत कर आए हैं, जब वो पार्टी हार जाती है उसी पार्टी को आप छोड़ रहे हैं, उसी लीडर को छोड़ रहे हैं।
0: It's a heartbreaking case of alleged medical negligence. At least that's what it being called, but one can also term it as a crime. It has emerged from AIIMS Bhopal, where a 3-year-old blood cancer patient lost his life after being mistakenly administered a hazardous chemical instead. Months after the incident, police have now registered an FIR based on findings of an internal inquiry. Take a look at this report.
10: A shocking case of medical negligence has come to light from AIIMS Bhopal. Life of a 3-year-old Sarthak snuffed out. The infant lost his life in December 2025 when a nurse employed at the hospital injected a hazardous chemical to the child. A clear case of medical negligence. 3-year-old Sarthak Yadav, who was undergoing treatment for blood cancer at the prestigious hospital, died when the nurse injected formalin into his IV line. The child was admitted to the pediatric ward on December 15th. He was scheduled for a bone marrow biopsy. The family claims on December 17th morning, a nursing officer picked up a syringe marked F containing formalin, which was kept for the biopsy, and used it to flush the child's blocked IV line without verification.
11: मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मैरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैश आ रहा है। मैंने पेमेंट तो, और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी।
10: The cops have now filed an official complaint on the basis of an internal inquiry report. 2 people have been booked so far. One has been booked for causing death by negligence and the other for negligent handling of poisonous substance.
12: वार्ड की जो नर्स थी, उन्होंने एक फॉर्मलिन इंजेक्शन वहां लाके रख दिया था और दूसरी नर्स ने आके उस इंजेक्शन को उस बालक को लगा दिया था। उसके पिता ने उसे मना भी करा, रोका भी था, तो उनकी लापरवाही पाए जाने से पहले मर्ग जांच हुई थी। बाद में हमने रिपोर्ट लेकर के उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें विषैले पदार्थों को असावधानी और लापरवाही से उपयोग करने के संबंध में धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया है।
13: वो नर्स जिन्होंने गलती की थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई है?
12: अभी शेष है, उनको लाकर के पूछताछ किया जाना।
10: The tragic incident has once again raised serious questions about patient safety and protocols in one of the country's premier medical institutes. Bureau Report, India Today.
0: A communal violence incident erupted late yesterday evening in Bairagiwala village under the Sahaspur police station area of Dehradun. This incident took place over a petty water dispute issue, and the police have now registered a case against 3 named accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. Let us take a look at this detailed report.
14: Clashes, vandalism, arson and vehicles set on fire. What began as a petty water dispute over irrigation and land quarrel resulted into a full-blown war claiming the life of an innocent. An angry mob barged into the house of the accused and set it on fire.
15: किस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है आपकी लग के हालांकि विस्फोट भी हो रहा है आक्रोशित भीड़ ने कुछ देर पहले पथराव भी किया था पुलिस लगातार स्थिति को संभालने में जुटी हुई थी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक आपको दिखा रहे हैं ये कि किस तरह से आरोपी के घर को आके हवाले कर दिया गया है
14: Police have registered a case against three accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. The situation in the village has remained tense.
16: You can see there's complete silence in the village after police resorted to charge. And right now, the police has also surrounded the area completely. The fire brigade, the fire tenders can be seen over here to douse the fire. And the situation remains tense. However, according to the police personnel, the situation is under control.
14: Police personnel are deployed in the area and are monitoring the situation to prevent any further escalation. As a precautionary measure, internet has also been suspended in the neighboring area. A large police contingent has been deployed in an effort to prevent further escalation. Local politicians claim that a group of local goons barged into the house of a Hindu and hacked him to death.
17: Group of criminals mob lynched a young man of the village who was my party worker as well. They entered his house and killed him. It was a cold-blooded murder. And the youth and the people in this area are agitated.
14: According to police, Vinod Kumar and his family had an ongoing dispute with their neighbor, Imtiaz, over water supply in their fields. After the crime, government officials swung into action and razed the house of the accused with bulldozer. In view of the communal sensitivity of the incident, the administration has placed the area on high alert. Personnel from multiple police stations have been deployed in and around the village with the villagers demanding Yogi-style bulldozer justice. With Tina Sahu and Ankit Sharma in Dehradun, Bureau Report, India Today.

0: Let's now take you to France. Prime Minister Narendra Modi kicked off his crucial six-day Europe tour in Nice, a visit that's likely to take an already strong partnership, that is, strategic partnership between India and France, to the next level. Prime Minister Modi held bilateral talks with French President Emmanuel Macron, and the two leaders jointly inaugurated Bharat Innovates 2026, where Prime Minister Modi highlighted the depth of India-France ties, calling the relationship a special partnership built on shared vision, conviction and innovation. Modi said both nations are working together to find solutions to global challenges, with cooperation spanning areas from security to sustainability. The Prime Minister also underlined India's growing innovation ecosystem, saying the country's youth are shaping its future. He described India as a breeding ground for innovators, home to the world's third largest startup ecosystem, and said the nation has immense potential in artificial intelligence, which is being used to transform lives and create solutions for humanity. French President Emmanuel Macron called it a huge honour to welcome Modi and congratulated him on his record tenure as Prime Minister. Macron praised India's focus on research and innovation, saying the country is at the forefront of global technological progress. He also cited the Chandrayaan 3 mission as a testament to India's capabilities. Prime Minister Modi's visit comes as India and France seek to further strengthen their special global strategic partnership with collaborations in AI, semiconductors, clean technology and the wider innovation ecosystem.
1: Innovation is in India's DNA. Hajaro varson se Bharat ne apne knowledge aur innovation se दुनिया को नई दिशा दी है. मैथमेटिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, मेडिसिन से लेकर के योगा तक, भारत का योगदान संपूर्ण मानवता की प्रगति का आधार रहा है. आज हमने इसी विरासत को नई गति और नई दिशा दी है. साथियों, बीते 11-12 वर्षों में भारत ने इनोवेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है. पेटेंट फाइलिंग से लेकर इंक्यूबेशन नेटवर्क्स तक, स्टार्टअप इंडिया से लेकर पॉलिसी सपोर्ट तक, ये पूरी जर्नी एक मिशन मोड में आगे बढ़ी है. आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है. लेकिन हमारी सोच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. हमने इनोवेशन को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने का काम किया है. स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाए गए हैं. युवाओं को हैकेथॉन्स और इनोवेशन चैलेंजेस से जोड़ा जा रहा है. पूरे देश में इंक्यूबेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का विस्तार किया जा रहा है और स्पेशली विमेन इनोवेटर्स को हम ढेर सारी नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं. भारत इनोवेट्स, भारत इनोवेट्स का भी यही लक्ष्य है. भारत इनोवेट्स इज एन इन्विटेशन टू द वर्ल्ड टू को क्रिएट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन विद इंडिया. मैं अगले 3 दिनों में आपके सेशंस और डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. हम पार्टनरशिप चाहते हैं, हम को डेवलपमेंट चाहते हैं, हम जॉइंट रिसर्च चाहते हैं, हम शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं और हम लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहते हैं. मैं आज यहां मौजूद हर इन्वेस्टर, हर यूनिवर्सिटी और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं, आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए। आज डिफेंस और स्पेस, इससे जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप्स भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए हैं। इससे क्लीन एनर्जी, एडवांस रिएक्टर्स और फ्रंटियर रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनने जा रही है। यह रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी और भारत से निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी। फ्रेंड्स, एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी, आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है और भारत जो भी इनोवेट करता है, जो भी सॉल्यूशन देता है, उसका फायदा ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है।
2: Why is it obvious for France to believe in that capacity to innovate in India? Well, I would say, to put it bluntly, so you have the demographic dividends. What does it mean? So a country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation. And if I only had to mention the one example on what you can do, airspace is the perfect example. With the Chandrayaan 3 mission in July 2023 that allowed the very first moon landing on the south pole of the moon, that was led in a record time by ISRO, with record cost, is demonstrations in terms of strengths, innovation, but also in terms of implementations at the industrial level, and something that is very concrete. And this has to lead many countries of the world to see India how it's like today, not only a country promising talents and delivering them, but it's not only a country full of contractors. No, absolutely not. It's a country of innovation and disrupting country in terms of technology. So on the other side, I would like also to persuade the VCs, investors and entrepreneurs who are here in France and in particular in Nice today with us of what is France.
3: The two leaders addressed a gathering

0: The TMC rebellion has taken a major turn. We're shifting our focus to the domestic arena now. The breakaway faction has formally split from the party and announced a new political alignment. Rebel MP Kakoli Ghosh Dostidar announced that the faction is merging with the NCPI and will support the NDA. She also claimed that 20 rebel MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla and sought permission to sit separately. Senior leader Shrudeep Bondopadhyay confirmed the merger, saying the group has joined the NCPI and that the courts will decide who represents the real TMC indeed. The announcement came after rebel MPs met Speaker Om Birla and Union Minister Bhupendra Yadav. The Mamta camp hit back strongly. TMC MLA Madhun Mitro accused the rebels of winning on Mamta Banerjee's name, called their actions unfair and claimed they do not have the numbers. He said any decision on moving court would be taken by Mamta Banerjee.
1: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
2: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ
3: कहाँ की पार्टी है दादा
4: डाउन करो ना दादा
2: एक पॉलिटिकल पार्टी है
4: डाउन है डाउन
2: और रिकॉग्नाइज कोई रीजनल पार्टी है
3: जी जी
2: तो वो पार्टी के साथ हम लोग मर्ज हुआ
3: टीएमसी रहेगी वो अलग है आप
2: वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड
3: क्लेम करेंगे
5: इससे मिला हम लोग क्या नाम है स्पीकर से उनको चिट्ठी दे दिया है ब्लॉक मांगा है ब्लॉक हमको मिल जाएगा पार्टी के बीच मिल जाएगा वेरी नाइस डिस्कशन विथ हिम एंड वेरी सक्सेसफुल बहुत अच्छा है All the 20 members are with there. We want to see, under the leadership of the Chief Minister of West Bengal, Naya jo khela shuru hua hai, jam joint government, means hamara double engine ka sarkar, ek saath milke, kandha mein kandha milake kaam karne chahta hai, for the interest of the nation, for the interest of the public. Ye dekhna bahut zaruri hai, public hi chahta hai. Hai na? We are going to be success. बीजेपी हमको मदद मांगेगा हम देगा मदद
6: फर्स्ट आई स्ट्रांगली कंडेम दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं आई स्ट्रांगली कंडेम देयर एटीट्यूड बिकॉज दे ओन द इलेक्शन बाय यूजिंग द फोटो एंड नेम ऑफ ममता बनर्जी एंड तृणमूल कांग्रेस सो दिस इज बेसिकली अ ट्रेचरी Pressure can't be like that, that 2022 MP should go. Something complicated and gehra hai. Dal mein kuch kala hai.
0: The Trinamool Congress has taken its battle against rebel MPs directly to the Lok Sabha Speaker. As Mamata Banerjee's party moves to prevent any breakaway faction from gaining official recognition. In a key development, TMC MPs Kirti Azad and Shagurika Ghosh visited Lok Sabha Speaker Om Birla's residence and submitted a letter from Abhishek Banerjee. In the letter, Abhishek Banerjee urged the Speaker not to grant recognition facilities or separate status to any rebel group. Citing the anti-defection law, he argued that political splits no longer enjoy legal protection and warned that MPs attempting to function as a separate faction could face disqualification. The TMC leader also requested that the party's official leadership be heard before any claim by a rebel group is considered in what is being seen as Mamata Banerjee's latest bid to contain the very rebellion.
7: Supreme Court ke constitutional bench mein ye kaha gaya hai शेड्यूल 10 के 4 अनुच्छेद में कहा गया है कोई स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है, उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे, वो आवेदन हमने दे दिया है माननीय स्पीकर को और हमको पूरा विश्वास है कि कानून के अंतर्गत ही जैसा काम करते रहे स्पीकर वैसे करेंगे।
8: हमने चिट्ठी दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, संविधान इसको अलाउ नहीं करता है, ये संविधान के विपरीत है, ये कानून के विपरीत है।
9: मुलाकात हुई कि नहीं हुई?
8: इस तरह से आप अपनी नैतिक कमजोरी दिखा रहे हैं कि जब पार्टी हार जाती है, जिस चिन्ह के तले आप जीत कर आए हैं, जिस लीडर के फोटो के नीचे आप जीत कर आए हैं, जब वो पार्टी हार जाती है उसी पार्टी को आप छोड़ रहे हैं, उसी लीडर को छोड़ रहे हैं।
0: It's a heartbreaking case of alleged medical negligence. At least that's what it's being called. But one can also term it as a crime. It has emerged from AIIMS Bhopal, where a 3-year-old blood cancer patient lost his life after being mistakenly administered a hazardous chemical instead. Months after the incident, police have now registered an FIR based on findings of an internal inquiry. Take a look at this report.
10: A shocking case of medical negligence has come to light from AIIMS Bhopal. Life of a 3-year-old Sarthak snuffed out. The infant lost his life in December 2025 when a nurse employed at the hospital injected a hazardous chemical to the child. A clear case of medical negligence. 3-year-old Sarthak Yadav, who was undergoing treatment for blood cancer at the prestigious hospital, died when the nurse injected formalin into his IV line. The child was admitted to the pediatric ward on December 15th. He was scheduled for a bone marrow biopsy. The family claims on December 17th morning, a nursing officer picked up a syringe marked F containing formalin, which was kept for the biopsy, and used it to flush the child's blocked IV line without verification.
11: मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैश आ रहा है। मैंने कही मैडम, और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड में सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उन्होंने लगा दी।
10: The corps have now filed an official complaint on the basis of an internal inquiry report. 2 people have been booked so far. One has been booked for causing death by negligence and the other for negligent handling of poisonous substance.
12: वार्ड की जो नर्स थी उन्होंने एक फॉर्मलिन इंजेक्शन वहां लाके रख दिया था और दूसरी नर्स ने आके उस इंजेक्शन को उस बालक को लगा दिया था। उसके पिता ने उसे मना भी करा, रोका भी था, तो उनकी लापरवाही पाए जाने से पहले मर्ग जांच हुई थी। बाद में हमने रिपोर्ट लेकर के उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें विषैले पदार्थों को असावधानी और लापरवाही से उपयोग करने के संबंध में धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया है।
13: वो नर्स जिन्होंने गलती की थी उनकी गिरफ्तारी हो गई है,
12: शेष है उनको लाकर के पूछताछ किया जा रहा है।
10: The tragic incident has once again raised serious questions about patient safety and protocols in one of the country's premier medical institutes. Bureau Report, India Today.
0: A communal violence incident erupted late yesterday evening in Bairagiwala village under the Sahaspur police station area of Dehradun. This incident took place over a petty water dispute issue. And the police have now registered a case against 3 named accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. Let us take a look at this detailed report.
14: Clashes, vandalism, arson and vehicles set on fire. What began as a petty water dispute over irrigation and land quarrel resulted into a full-blown war claiming the life of an innocent. An angry mob barged into the house of the accused and set it on fire.
15: किस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है आपके लपटे हालांकि विस्फोट भी हो रहा है आक्रोशित भीड़ ने कुछ देर पहले पथराव भी किया था पुलिस लगातार स्थिति को संभालने में जुटी हुई थी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आरोपी के घर को आके हवाले कर दिया गया है
14: Police have registered a case against three accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. The situation in the village has remained tense.
16: You can see there's complete silence in the village after police resorted to charge. And right now, the police has also surrounded the area completely. The fire brigade, the fire tenders can be seen over here to douse the fire. And the situation remains tense. However, according to the police personnel, the situation is under control.
14: Police personnel are deployed in the area and are monitoring the situation to prevent any further escalation. As a precautionary measure, internet has also been suspended in the neighboring area. A large police contingent has been deployed in an effort to prevent further escalation. Local politicians claim that a group of local goons barged into the house of a Hindu and hacked him to death.
17: Group of criminals mob lynched a young man of the village who was my party worker as well. They entered his house and killed him. It was a cold-blooded murder. And the youth and the people in this area are agitated.
14: According to police, Vinod Kumar and his family had an ongoing dispute with their neighbor, Imtiaz, over water supply in their fields. After the crime, government officials swung into action and razed the house of the accused with bulldozer. In view of the communal sensitivity of the incident, the administration has placed the area on high alert. Personnel from multiple police stations have been deployed in and around the village with the villagers demanding yogi-style bulldozer justice. With Tina Sahu and Ankit Sharma in Dehradun, Bureau Report, India Today.

0: The TMC rebellion has taken a major turn. We're shifting our focus to the domestic arena now. The breakaway faction has formally split from the party and announced a new political alignment. Rebel MP Kakoli Ghosh Dostidar announced that the faction is merging with the NCPI and will support the NDA. She also claimed that 20 rebel MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla and sought permission to sit separately. Senior leader Shrudeep Bondopadhyay confirmed the merger, saying the group has joined the NCPI and that the courts will decide who represents the real TMC indeed. The announcement came after rebel MPs met Speaker Om Birla and Union Minister Bhupendra Yadav. The Mamta camp hit back strongly. TMC MLA Madan Mitro accused the rebels of winning on Mamta Banerjee's name, called their actions unfair and claimed they do not have the numbers. He said any decision on moving court would be taken by Mamta Banerjee.
1: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
2: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ये पार्टी को साथ हम लोग शामिल हुआ
3: कहाँ की पार्टी है दादा
4: डाउन करो ना दादा
2: एक पॉलिटिकल पार्टी है
4: डाउन है
2: वो रिकॉग्नाइज कोई रीजनल पार्टी है
3: जी जी
2: तो वो पार्टी को साथ हम लोग मार्च हुआ
3: टीएमसी रहेगी वो अलग है आप
2: वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड
3: होगा क्लेम करेंगे
5: से मिला हम लोग क्या नाम है स्पीकर से उनको चिट्ठी दे दिया है ब्लॉक मांगा है ब्लॉक हमको मिल जाएगा पार्टी अभी भी मिल जाएगा वेरी नाइस डिस्कशन विथ हिम एंड वेरी सक्सेसफुल बहुत अच्छा है All the 20 members are with there. We want to see, under the leadership of the Chief Minister of West Bengal, Naya jo khela shuru hua hai, jam joint government, means hamara double engine ka sarkar, ek saath milke, kandha mein kandha milake kaam karne chahta hai, for the interest of the nation, for the interest of the public. Ye dekhna bahut jaruri hai, public hi chahta hai, hai na? We are going to be success. बीजेपी हमको मदद मांगेगा हम देगा मदद
6: फर्स्ट आई स्ट्रांगली कंडेम दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं आई स्ट्रांगली कंडेम देयर एटीट्यूड बिकॉज दे ओन द इलेक्शन बाय यूजिंग द फोटो एंड नेम ऑफ ममता बनर्जी एंड तृणमूल कांग्रेस सो दिस इज बेसिकली अ ट्रेचरी Pressure can't be like that, that 2022 MP should go. Something complicated and gehra hai. Dal mein kuch kala hai.
0: The Trinamool Congress has taken its battle against rebel MPs directly to the Lok Sabha Speaker. As Mamata Banerjee's party moves to prevent any breakaway faction from gaining official recognition. In a key development, TMC MPs Kirti Azad and Shagurika Ghosh visited Lok Sabha Speaker Om Birla's residence and submitted a letter from Abhishek Banerjee. In the letter, Abhishek Banerjee urged the Speaker not to grant recognition facilities or separate status to any rebel group. Citing the anti-defection law, he argued that political splits no longer enjoy legal protection and warned that MPs attempting to function as a separate faction could face disqualification. The TMC leader also requested that the party's official leadership be heard before any claim by a rebel group is considered in what is being seen as Mamata Banerjee's latest bid to contain the very rebellion.
7: Supreme Court ke constitutional bench mein ye kaha gaya hai शेड्यूल 10 के 4 अनुच्छेद में कहा गया है कोई स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है, उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे, वो आवेदन हमने दे दिया है माननीय स्पीकर को और हमको पूरा विश्वास है कि कानून के अंतर्गत ही जैसा काम करते रहे स्पीकर वैसे करेंगे।
8: हमने चिट्ठी दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, संविधान इसको अलाउ नहीं करता है, ये संविधान के विपरीत है, ये कानून के विपरीत है।
3: मुलाकात हुई कि नहीं हुई?
8: इस तरह से आप अपनी नैतिक कमजोरी दिखा रहे हैं कि जब पार्टी हार जाती है, जिस चिन्ह के तले आप जीत कर आए हैं, जिस लीडर के फोटो के नीचे आप जीत कर आए हैं, जब वो पार्टी हार जाती है उसी पार्टी को आप छोड़ रहे हैं, उसी लीडर को छोड़ रहे हैं।
0: It's a heartbreaking case of alleged medical negligence. At least that's what it's being called. But one can also term it as a crime. It has emerged from AIIMS Bhopal, where a 3-year-old blood cancer patient lost his life after being mistakenly administered a hazardous chemical instead. Months after the incident, police have now registered an FIR based on findings of an internal inquiry. Take a look at this report.
9: A shocking case of medical negligence has come to light from AIIMS Bhopal. Life of a 3-year-old Sarthak snuffed out. The infant lost his life in December 2025 when a nurse employed at the hospital injected a hazardous chemical to the child. A clear case of medical negligence. 3-year-old Sarthak Yadav, who was undergoing treatment for blood cancer at the prestigious hospital, died when the nurse injected formalin into his IV line. The child was admitted to the pediatric ward on December 15th. He was scheduled for a bone marrow biopsy. The family claims on December 17th morning, a nursing officer picked up a syringe marked F containing formalin, which was kept for the biopsy, and used it to flush the child's blocked IV line without verification.
10: मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही मैडम, और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड में सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी।
9: The cops have now filed an official complaint on the basis of an internal inquiry report. 2 people have been booked so far. One has been booked for causing death by negligence and the other for negligent handling of poisonous substance.
11: वार्ड की जो नर्स थी उन्होंने एक फॉर्मलिन इंजेक्शन वहां लाके रख दिया था और दूसरी नर्स ने आके उस इंजेक्शन को उस बालक को लगा दिया था। उसके पिता ने उसे मना भी करा, रोका भी था, तो उनकी लापरवाही पाए जाने से पहले मर्ग जांच हुई थी। बाद में हमने एक रिपोर्ट लेकर के उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें विषैले पदार्थों को असावधानी और लापरवाही से उपयोग करने के संबंध में धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया है।
12: वो नर्स जिन्होंने गलती की थी उनकी गिरफ्तारी हो गई है,
11: अभी शेष है, उनको लाकर के पूछताछ किया जा रहा है।
9: द ट्रेजिक इंसिडेंट हैज वंस अगेन रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस अबाउट पेशेंट सेफ्टी एंड प्रोटोकॉल्स इन वन ऑफ द कंट्रीज प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे।
0: A communal violence incident erupted late yesterday evening in Bairagiwala village under the Sahaspur police station area of Dehradun. This incident took place over a petty water dispute issue, and the police have now registered a case against 3 named accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. Let us take a look at this detailed report.
13: Vandalism, arson and vehicles set on fire. What began as a petty water dispute over irrigation and land quarrel resulted into a full-blown war claiming the life of an innocent. An angry mob barged into the house of the accused and set it on fire.
14: किस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है आपके लपटे हालांकि विस्फोट भी हो रहा है आक्रोशित भीड़ ने कुछ देर पहले पथराव भी किया था पुलिस लगातार स्थिति को संभालने में जुटी हुई थी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक तो आपको दिखा रहे हैं ये कि किस तरह से आरोपी के घर को आके हवाले कर दिया गया है
13: Police have registered a case against three accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. The situation in the village has remained tense.
15: You can see there's complete silence in the village after police resorted to charge. And right now, the police has also surrounded the area completely. The fire brigade, the fire tenders can be seen over here to douse the fire. And the situation remains tense. However, according to the police personnel, the situation is under control.
13: Police personnel are deployed in the area and are monitoring the situation to prevent any further escalation. As a precautionary measure, internet has also been suspended in the neighboring area. A large police contingent has been deployed in an effort to prevent further escalation. Local politicians claim that a group of local goons barged into the house of a Hindu and hacked him to death.
16: Group of criminals mobilized a young man of the village who was my party worker as well. They entered his house and killed him. It was a cold-blooded murder. And the youth and the people in this area are agitated.
13: According to police, Vinod Kumar and his family had an ongoing dispute with their neighbor, Imtiaz, over water supply in their fields. After the crime, government officials swung into action and razed the house of the accused with bulldozer. In view of the communal sensitivity of the incident, the administration has placed the area on high alert. Personnel from multiple police stations have been deployed in and around the village, with the villagers demanding yogi-style bulldozer justice. With Tina Sahu and Ankit Sharma in Dehradun, Bureau Report, India Today.

0: Let's now take you to France. Prime Minister Narendra Modi kicked off his crucial six-day Europe tour in Nice, a visit that's likely to take an already strong partnership, that is, strategic partnership between India and France, to the next level. Prime Minister Modi held bilateral talks with French President Emmanuel Macron, and the two leaders jointly inaugurated Bharat Innovates 2026, where Prime Minister Modi highlighted the depth of India-France ties, calling the relationship a special partnership built on shared vision, conviction and innovation. Modi said, both nations are working together to find solutions to global challenges, with cooperation spanning areas from security to sustainability. The Prime Minister also underlined India's growing innovation ecosystem, saying the country's youth are shaping its future. He described India as a breeding ground for innovators, home to the world's third largest startup ecosystem, and said the nation has immense potential in artificial intelligence, which is being used to transform lives and create solutions for humanity. French President Emmanuel Macron called it a huge honour to welcome Modi and congratulated him on his record tenure as Prime Minister. Macron praised India's focus on research and innovation, saying the country is at the forefront of global technological progress. He also cited the Chandrayaan 3 mission as a testament to India's capabilities. Prime Minister Modi's visit comes as India and France seek to further strengthen their special global strategic partnership with collaborations in AI, semiconductors, clean technology and the wider innovation ecosystem.
1: Innovation is in India's DNA. Hajaron varson se Bharat ne apne knowledge aur innovation se दुनिया को नई दिशा दी है. मैथमेटिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, मेडिसिन से लेकर के योगा तक, भारत का योगदान संपूर्ण मानवता की प्रगति का आधार रहा है. आज हमने इसी विरासत को नई गति और नई दिशा दी है. साथियों, बीते 11-12 वर्षों में भारत ने इनोवेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है. पेटेंट फाइलिंग से लेकर इंक्यूबेशन नेटवर्क तक, स्टार्टअप इंडिया से लेकर पॉलिसी सपोर्ट तक, ये पूरी जर्नी एक मिशन मोड में आगे बढ़ी है. आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है. लेकिन हमारी सोच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. हमने इनोवेशन को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने का काम किया है. स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाए गए हैं. युवाओं को हैकेथॉन्स और इनोवेशन चैलेंजेस से जोड़ा जा रहा है. पूरे देश में इंक्यूबेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का विस्तार किया जा रहा है और स्पेशली विमेन इनोवेटर्स को हम ढेर सारी नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं. भारत इनोवेट्स, भारत इनोवेट्स का भी यही लक्ष्य है. भारत इनोवेट्स इज एन इन्विटेशन टू द वर्ल्ड टू को क्रिएट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन विद इंडिया. मैं अगले 3 दिनों में आपके सेशंस और डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. हम पार्टनरशिप चाहते हैं, हम को डेवलपमेंट चाहते हैं, हम जॉइंट रिसर्च चाहते हैं, हम शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं और हम लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहते हैं. मैं आज यहां मौजूद हर इन्वेस्टर, हर यूनिवर्सिटी और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेनर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं, आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए। आज डिफेंस और स्पेस, इससे जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप्स भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए हैं। इससे क्लीन एनर्जी, एडवांस रिएक्टर्स और फ्रंटियर रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनने जा रही है। यह रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी और भारत से निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी। फ्रेंड्स, एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी, आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है और भारत जो भी इनोवेट करता है, जो भी सॉल्यूशन देता है, उसका फायदा ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है।
2: Why is it obvious for France to believe in that capacity to innovate in India? Well, I would say, to put it bluntly, so you have the demographic dividends. What does it mean? So a country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation. And if I only had to mention the one example on what you can do, airspace is the perfect example. With the Chandrayaan 3 mission in July 2023 that allowed the very first moon landing on the south pole of the moon, that was led in a record time by Israel, with cost, with record force, is demonstrations in terms of strengths, innovation, but also in terms of implementations at the industrial level, and something that is very concrete. And this has to lead many countries of the world to see India how it's like today. Not only a country promising talents and delivering them, but it's not only a country full of contractors. No, absolutely not. It's a country of innovation and disrupting country in terms of technology. So on the other side, I would like also to persuade the VCs, investors and entrepreneurs who are here in France and in particular in Nice today with us of what is France.
3: The two leaders addressed a gathering that comprised about 120 Indian deep tech startups as well as innovators and top technology institutions, and close to 500 investors, venture capitalists and business leaders from France, from India and indeed from around the world. The Bharat Innovates event, as you probably

आज डिफेंस और स्पेस इससे जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप्स भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए हैं। इससे क्लीन एनर्जी, एडवांस रिएक्टर्स और फ्रंटियर रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनने जा रही है। यह रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी और भारत से निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी। फ्रेंड्स, एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी, आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है और भारत जो भी इनोवेट करता है, जो भी सॉल्यूशन देता है, उसका फायदा ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है।

0: The TMC rebellion has taken a major turn. We're shifting our focus to the domestic arena now. The breakaway faction has formally split from the party and announced a new political alignment. Rebel MP Kakoli Ghosh Dostidar announced that the faction is merging with the NCPI and will support the NDA. She also claimed that 20 rebel MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla and sought permission to sit separately. Senior leader Shrudeep Bondopadhyay confirmed the merger, saying the group has joined the NCPI and that the courts will decide who represents the real TMC indeed. The announcement came after rebel MPs met Speaker Om Birla and Union Minister Bhupendra Yadav. The Mamta camp hit back strongly. TMC MLA Madan Mitro accused the rebels of winning on Mamta Banerjee's name, called their actions unfair and claimed they do not have the numbers. He said any decision on moving court would be taken by Mamta Banerjee.
1: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
2: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ
3: कहाँ की पार्टी है दादा
4: डाउन करो ना दादा
2: एक पॉलिटिकल पार्टी है
4: डाउन है डाउन
2: और रिकॉग्नाइज कोई रीजनल पार्टी है तो वो पार्टी के साथ हम लोग मर्ज हुआ
3: टीएमसी रहेगी वो अलग है आप
2: वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड
3: होगा क्लेम करेंगे
5: इससे मिला हम लोग क्या नाम है स्पीकर से उनको चिट्ठी दे दिया है ब्लॉक मांगा है ब्लॉक हमको मिल जाएगा पार्टी के बीच मिल जाएगा वेरी नाइस डिस्कशन हुई थी एंड वेरी सक्सेसफुल बहुत अच्छा All the 20 members are with there. We want to see, under the leadership of the Chief Minister of West Bengal, Naya jo khela shuru hua hai, jijam joint government, means hamara double engine ka sarkar, ek saath milke, kandha mein kandha milake kaam karne chahta hai, for the interest of the nation, for the interest of the public. Ye dekhna bahut zaruri hai, public hi chahta hai. Hai na? We are going to be success. बीजेपी हमको मदद मांगेगा हम देगा मदद
6: फर्स्ट आई स्ट्रांगली कंडेम दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं आई स्ट्रांगली कंडेम देयर एटीट्यूड बिकॉज दे ओन द इलेक्शन बाय यूजिंग द फोटो एंड नेम ऑफ ममता बनर्जी एंड तृणमूल कांग्रेस सो दिस इज बेसिकली अ ट्रेचरी Pressure can't be like that, that 2022 MP should go. Something complicated and gehra hai. Dal mein kuch kala hai.
0: The Trinamool Congress has taken its battle against rebel MPs directly to the Lok Sabha Speaker. As Mamata Banerjee's party moves to prevent any breakaway faction from gaining official recognition. In a key development, TMC MPs Kirti Azad and Shagurika Ghosh visited Lok Sabha Speaker Om Birla's residence and submitted a letter from Abhishek Banerjee. In the letter, Abhishek Banerjee urged the Speaker not to grant recognition facilities or separate status to any rebel group. Citing the anti-defection law, he argued that political splits no longer enjoy legal protection and warned that MPs attempting to function as a separate faction could face disqualification. The TMC leader also requested that the party's official leadership be heard before any claim by a rebel group is considered in what is being seen as Mamata Banerjee's latest bid to contain the very rebellion.
7: Supreme Court ke constitutional bench mein ye kaha gaya hai शेड्यूल 10 के 4 अनुच्छेद में कहा गया है कोई स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है, उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे, वो आवेदन हमने दे दिया है माननीय स्पीकर को और हमको पूरा विश्वास है कि कानून के अंतर्गत ही जैसा काम करते रहे स्पीकर वैसे करेंगे।
8: हमने चिट्ठी दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, संविधान इसको अलाउ नहीं करता है, ये संविधान के विपरीत है, ये कानून के विपरीत है।
9: मुलाकात हुई कि नहीं हुई?
8: इस तरह से आप अपनी नैतिक कमजोरी दिखा रहे हैं कि जब पार्टी हार जाती है जिस चिन्ह के तले आप जीत कर आए हैं, जिस लीडर के फोटो के नीचे आप जीत कर आए हैं, जब वो पार्टी हार जाती है उसी पार्टी को आप छोड़ रहे हैं, उसी लीडर को छोड़ रहे हैं।
0: It's a heartbreaking case of alleged medical negligence. At least that's what it's being called, but one can also term it as a crime. It has emerged from AIIMS Bhopal, where a 3-year-old blood cancer patient lost his life after being mistakenly administered a hazardous chemical instead. Months after the incident, police have now registered an FIR based on findings of an internal inquiry. Take a look at this report.
10: A shocking case of medical negligence has come to light from AIIMS Bhopal. Life of a 3-year-old Sarthak snuffed out. The infant lost his life in December 2025 when a nurse employed at the hospital injected a hazardous chemical to the child. A clear case of medical negligence. 3-year-old Sarthak Yadav, who was undergoing treatment for blood cancer at the prestigious hospital, died when the nurse injected formalin into his IV line. The child was admitted to the pediatric ward on December 15th. He was scheduled for a bone marrow biopsy. The family claims on December 17th morning, a nursing officer picked up a syringe marked F containing formalin, which was kept for the biopsy, and used it to flush the child's blocked IV line without verification.
11: मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मैरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैश आ रहा है। मैंने पेमेंट और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी।
10: The cops have now filed an official complaint on the basis of an internal inquiry report. 2 people have been booked so far. One has been booked for causing death by negligence and the other for negligent handling of poisonous substance.
12: वार्ड की जो नर्स थी उन्होंने एक फॉर्मलिन इंजेक्शन वहां लाके रख दिया था और दूसरी नर्स ने आके उस इंजेक्शन को उस बालक को लगा दिया था। उसके पिता ने उसे मना भी करा, रोका भी था, तो उनकी लापरवाही पाए जाने से पहले मर्ग जांच हुई थी। बाद में हमने रिपोर्ट लेकर के उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें विषैले पदार्थों को असावधानी और लापरवाही से उपयोग करने के संबंध में धारा लगाकर मामला दर्ज किया है।
13: वो नर्स जिन्होंने गलती की थी उनकी गिरफ्तारी हो गई है,
12: अभी शेष है उनको लाकर के पूछताछ किया जाना।
10: The tragic incident has once again raised serious questions about patient safety and protocols in one of the country's premier medical institutes. Bureau Report, India Today.
0: A communal violence incident erupted late yesterday evening in Bairagiwala village under the Sahaspur police station area of Dehradun. This incident took place over a petty water dispute issue, and the police have now registered a case against 3 named accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. Let us take a look at this detailed report.
14: Clashes, vandalism, arson and vehicles set on fire. What began as a petty water dispute over irrigation and land quarrel resulted into a full-blown war claiming the life of an innocent. An angry mob barged into the house of the accused and set it on fire.
15: किस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है आपकी लपटे हालांकि विस्फोट भी हो रहा है आक्रोशित भीड़ ने कुछ देर पहले पथराव भी किया था पुलिस लगातार स्थिति को संभालने में जुटी हुई थी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आरोपी के घर को आके हवाले कर दिया गया है
14: Police have registered a case against three accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. The situation in the village has remained tense.
16: You can see there's complete silence in the village after police resorted to charge. And right now, the police has also surrounded the area completely. The fire brigade, the fire tenders can be seen over here to douse the fire. And the situation remains tense. However, according to the police personnel, the situation is under control.
14: Police personnel are deployed in the area and are monitoring the situation to prevent any further escalation. As a precautionary measure, internet has also been suspended in the neighboring area. A large police contingent has been deployed in an effort to prevent further escalation. Local politicians claim that a group of local goons barged into the house of a Hindu and hacked him to death.
17: Group of criminals mob lynched a young man of the village who was my party worker as well. They entered his house and killed him. It was a cold-blooded murder. And the youth and the people in this area are agitated.
14: According to police, Vinod Kumar and his family had an ongoing dispute with their neighbor, Imtiaz, over water supply in their fields. After the crime, government officials swung into action and razed the house of the accused with bulldozer. In view of the communal sensitivity of the incident, the administration has placed the area on high alert. Personnel from multiple police stations have been deployed in and around the village with the villagers demanding Yogi-style bulldozer justice. With Tina Sahu and Ankit Sharma in Dehradun, Bureau Report, India Today.

0: The TMC rebellion has taken a major turn. We're shifting our focus to the domestic arena now. The breakaway faction has formally split from the party and announced a new political alignment. Rebel MP Kakoli Ghosh Dostidar announced that the faction is merging with the NCPI and will support the NDA. She also claimed that 20 rebel MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla and sought permission to sit separately. Senior leader Shrudeep Bondopadhyay confirmed the merger, saying the group has joined the NCPI and that the courts will decide who represents the real TMC indeed. The announcement came after rebel MPs met Speaker Om Birla and Union Minister Bhupendra Yadav. The Mamta camp hit back strongly. TMC MLA Madan Mitro accused the rebels of winning on Mamta Banerjee's name, called their actions unfair and claimed they do not have the numbers. He said any decision on moving court would be taken by Mamta Banerjee.
1: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
2: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ
3: कहाँ की पार्टी है दादा
4: डाउन करो ना दादा
2: ये पॉलिटिकल पार्टी है
4: डाउन है डाउन
2: और रिकॉग्नाइज कोई रीजनल पार्टी है
3: जी जी
2: तो वो पार्टी के साथ हम लोग मर्ज हुआ
3: टीएमसी रहेगी वो अलग है आप
2: वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड
3: क्लेम करेंगे
5: इससे मिला हम लोग क्या नाम है स्पीकर से उनको चिट्ठी दे दिया है ब्लॉक मांगा है ब्लॉक हमको मिल जाएगा पार्टी के बीच मिल जाएगा वेरी नाइस डिस्कशन विथ हिम एंड वेरी सक्सेसफुल बहुत अच्छा है All the 20 members are with there. We want to see, under the leadership of the Chief Minister of West Bengal, naya jo khela shuru hua hai, jisam joint government, means hamara double engine ka sarkar, ek saath milke, kandha mein kandha milake kaam karne chahta hai, for the interest of the nation, for the interest of the public. Ye dekhna bahut zaruri hai, public hi chahta hai. Hai na? We are going to be success. बीजेपी हमको मदद मांगेगा हम देगा मदद
6: फर्स्ट आई स्ट्रांगली कंडेम दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं आई स्ट्रांगली कंडेम देयर एटीट्यूड बिकॉज दे ओन द इलेक्शन बाय यूजिंग द फोटो एंड नेम ऑफ ममता बनर्जी एंड तृणमूल कांग्रेस सो दिस इज बेसिकली अ ट्रेचरी Pressure can't be like that, that 2022 MP should go. Something complicated and gehra hai. Dal mein kuch kala hai.
0: The Trinamool Congress has taken its battle against rebel MPs directly to the Lok Sabha Speaker. As Mamata Banerjee's party moves to prevent any breakaway faction from gaining official recognition. In a key development, TMC MPs Kirti Azad and Shagurika Ghosh visited Lok Sabha Speaker Om Birla's residence and submitted a letter from Abhishek Banerjee. In the letter, Abhishek Banerjee urged the Speaker not to grant recognition facilities or separate status to any rebel group. Citing the anti-defection law, he argued that political splits no longer enjoy legal protection and warned that MPs attempting to function as a separate faction could face disqualification. The TMC leader also requested that the party's official leadership be heard before any claim by a rebel group is considered in what is being seen as Mamata Banerjee's latest bid to contain the very rebellion.
7: Supreme Court ke constitutional bench mein ye kaha gaya hai शेड्यूल 10 के 4 अनुच्छेद में कहा गया है कोई स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है, उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे, वो आवेदन हमने दे दिया है माननीय स्पीकर को और हमको पूरा विश्वास है कि कानून के अंतर्गत ही जैसा काम करते रहे स्पीकर वैसे करेंगे।
8: हमने चिट्ठी दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, संविधान इसको अलाउ नहीं करता है, ये संविधान के विपरीत है, ये कानून के विपरीत है।
9: स्पीकर साहब से मुलाकात हुई कि नहीं हुई?
8: इस तरह से आप अपनी नैतिक कमजोरी दिखा रहे हैं कि जब पार्टी हार जाती है जिस चिन्ह के तले आप जीत कर आए हैं, जिस लीडर के फोटो के नीचे आप जीत कर आए हैं, जब वो पार्टी हार जाती है उसी पार्टी को आप छोड़ रहे हैं, उसी लीडर को छोड़ रहे हैं।
0: It's a heartbreaking case of alleged medical negligence, at least that's what it's being called, but one can also term it as a crime. It has emerged from AIIMS Bhopal, where a 3-year-old blood cancer patient lost his life after being mistakenly administered a hazardous chemical instead. Months after the incident, police have now registered an FIR based on findings of an internal inquiry. Take a look at this report.
10: A shocking case of medical negligence has come to light from AIIMS Bhopal. Life of a 3-year-old Sarthak snuffed out. The infant lost his life in December 2025 when a nurse employed at the hospital injected a hazardous chemical to the child. A clear case of medical negligence. 3-year-old Sarthak Yadav, who was undergoing treatment for blood cancer at the prestigious hospital, died when the nurse injected formalin into his IV line. The child was admitted to the pediatric ward on December 15th. He was scheduled for a bone marrow biopsy. The family claims on December 17th morning, a nursing officer picked up a syringe marked F containing formalin, which was kept for the biopsy, and used it to flush the child's blocked IV line without verification.
11: मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैश आ रहा है। मैंने पेमेंट और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड में सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उन्होंने लगा दी।
10: The cops have now filed an official complaint on the basis of an internal inquiry report. 2 people have been booked so far. One has been booked for causing death by negligence and the other for negligent handling of poisonous substance.
12: वार्ड की जो नर्स थी उन्होंने एक फॉर्मलिन इंजेक्शन वहां लाके रख दिया था और दूसरी नर्स ने आके उस इंजेक्शन को उस बालक को लगा दिया था। उसके पिता ने उसे मना भी करा, रोका भी था, तो उनकी लापरवाही पाए जाने से पहले मर्ग जांच हुई थी। बाद में हमने रिपोर्ट लेकर के उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें विषैले पदार्थों को असावधानी और लापरवाही से उपयोग करने के संबंध में धाराएं लगाकर तो मामला दर्ज किया है।
13: वो नर्स जिन्होंने गलती की थी उनकी गिरफ्तारी हो गई
12: है, उनको लाकर के पूछताछ किया जा रहा है।
10: The tragic incident has once again raised serious questions about patient safety and protocols in one of the country's premier medical institutes. Bureau Report, India Today.
0: A communal violence incident erupted late yesterday evening in Bairagiwala village under the Sahaspur police station area of Dehradun. This incident took place over a petty water dispute issue, and the police have now registered a case against 3 named accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. Let us take a look at this detailed report.
14: Clashes, vandalism, arson and vehicles set on fire. What began as a petty water dispute over irrigation and land quarrel resulted into a full-blown war claiming the life of an innocent. An angry mob barged into the house of the accused and set it on fire.
15: किस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है आपके लपटे हालांकि विस्फोट भी हो रहा है आक्रोशित भीड़ ने कुछ देर पहले पथराव भी किया था पुलिस लगातार स्थिति को संभालने में जुटी हुई थी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक आपको दिखा रहे हैं ये कि किस तरह से आरोपी के घर को आके हवाले कर दिया गया है
14: Police have registered a case against three accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. The situation in the village has remained tense.
16: You can see there's complete silence in the village after police resorted to charge. And right now, the police has also surrounded the area completely. The fire brigade, the fire tenders can be seen over here to douse the fire. And the situation remains tense. However, according to the police personnel, the situation is under control.
14: Police personnel are deployed in the area and are monitoring the situation to prevent any further escalation. As a precautionary measure, internet has also been suspended in the neighboring area. A large police contingent has been deployed in an effort to prevent further escalation. Local politicians claim that a group of local goons barged into the house of a Hindu and hacked him to death.
17: Group of criminals mob lynched a young man of the village who was my party worker as well. They entered his house and killed him. It was a cold-blooded murder. And the youth and the people in this area are agitated.
14: According to police, Vinod Kumar and his family had an ongoing dispute with their neighbor, Imtiaz, over water supply in their fields. After the crime, government officials swung into action and razed the house of the accused with bulldozer. In view of the communal sensitivity of the incident, the administration has placed the area on high alert. Personnel from multiple police stations have been deployed in and around the village with the villagers demanding yogi-style bulldozer justice. With Tina Sahu and Ankit Sharma in Dehradun, Bureau Report, India Today.

0: The TMC rebellion has taken a major turn. We're shifting our focus to the domestic arena now. The breakaway faction has formally split from the party and announced a new political alignment. Rebel MP Kakoli Ghosh Dostidar announced that the faction is merging with the NCPI and will support the NDA. She also claimed that 20 rebel MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla and sought permission to sit separately. Senior leader Shrudeep Bondopadhyay confirmed the merger, saying the group has joined the NCPI and that the courts will decide who represents the real TMC indeed. The announcement came after rebel MPs met Speaker Om Birla and Union Minister Bhupendra Yadav. The Mamta camp hit back strongly. TMC MLA Madan Mitro accused the rebels of winning on Mamta Banerjee's name, called their actions unfair and claimed they do not have the numbers. He said any decision on moving court would be taken by Mamta Banerjee.
1: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
2: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ
3: कहाँ की पार्टी है दादा
4: डाउन करो ना दादा
2: एक पॉलिटिकल पार्टी है
4: डाउन है डाउन
2: और रिकॉग्नाइज्ड कोई रीजनल पार्टी है
3: जी जी
2: तो वो पार्टी के साथ हम लोग मर्ज हुआ
3: टीएमसी रहेगी वो अलग है आप
2: वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड
3: क्लेम करेंगे
5: इससे मिला हम लोग क्या नाम है स्पीकर से उनको चिट्ठी दे दिया है ब्लॉक मांगा है ब्लॉक हमको मिल जाएगा पार्टी के बीच मिल जाएगा वेरी नाइस डिस्कशन विथ हिम एंड वेरी सक्सेसफुल बहुत अच्छा है All the 20 members are with there. We want to see, under the leadership of the Chief Minister of West Bengal, Naya jo khela shuru hua hai, jam joint government, means hamara double engine ka sarkar, ek saath milke, kandha mein kandha milake kaam karne chahta hai, for the interest of the nation, for the interest of the public. Ye dekhna bahut jaruri hai, public hi chahta hai. Hai na? We are going to be success. बीजेपी हमको मदद मांगेगा हम देगा मदद
6: फर्स्ट आई स्ट्रांगली कंडेम दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं आई स्ट्रांगली कंडेम देयर एटीट्यूड बिकॉज दे ओन द इलेक्शन बाय यूजिंग द फोटो एंड नेम ऑफ ममता बनर्जी एंड तृणमूल कांग्रेस सो दिस इज बेसिकली अ ट्रेचरी Pressure can't be like that, that 2022 MP should go. Something complicated and gehra hai. Dal mein kuch kala hai.
0: The Trinamool Congress has taken its battle against rebel MPs directly to the Lok Sabha Speaker. As Mamata Banerjee's party moves to prevent any breakaway faction from gaining official recognition. In a key development, TMC MPs Kirti Azad and Shagurika Ghosh visited Lok Sabha Speaker Om Birla's residence and submitted a letter from Abhishek Banerjee. In the letter, Abhishek Banerjee urged the Speaker not to grant recognition facilities or separate status to any rebel group. Citing the anti-defection law, he argued that political splits no longer enjoy legal protection and warned that MPs attempting to function as a separate faction could face disqualification. The TMC leader also requested that the party's official leadership be heard before any claim by a rebel group is considered in what is being seen as Mamata Banerjee's latest bid to contain the very rebellion.
7: Supreme Court ke constitutional bench mein ye kaha gaya hai शेड्यूल 10 के 4 अनुच्छेद में कहा गया है कोई स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है, उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे, वो आवेदन हमने दे दिया है माननीय स्पीकर को और हमको पूरा विश्वास है कि कानून के अंतर्गत ही जैसा काम करते रहे स्पीकर वैसे करेंगे।
8: हमने चिट्ठी दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, संविधान इसको अलाउ नहीं करता है, ये संविधान के विपरीत है, ये कानून के विपरीत है।
9: मुलाकात हुई कि नहीं हुई?
8: इस तरह से आप अपनी नैतिक कमजोरी दिखा रहे हैं कि जब पार्टी हार जाती है, जिस चिन्ह के तले आप जीत कर आए हैं, जिस लीडर के फोटो के नीचे आप जीत कर आए हैं, जब वो पार्टी हार जाती है उसी पार्टी को आप छोड़ रहे हैं, उसी लीडर को छोड़ रहे हैं।
0: It's a heartbreaking case of alleged medical negligence. At least that's what it's being called. But one can also term it as a crime. It has emerged from AIIMS Bhopal, where a 3-year-old blood cancer patient lost his life after being mistakenly administered a hazardous chemical instead. Months after the incident, police have now registered an FIR based on findings of an internal inquiry. Take a look at this report.
10: A shocking case of medical negligence has come to light from AIIMS Bhopal. Life of a 3-year-old Sarthak snuffed out. The infant lost his life in December 2025 when a nurse employed at the hospital injected a hazardous chemical to the child. A clear case of medical negligence. 3-year-old Sarthak Yadav, who was undergoing treatment for blood cancer at the prestigious hospital, died when the nurse injected formalin into his IV line. The child was admitted to the pediatric ward on December 15th. He was scheduled for a bone marrow biopsy. The family claims on December 17th morning, a nursing officer picked up a syringe marked F containing formalin, which was kept for the biopsy, and used it to flush the child's blocked IV line without verification.
11: मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लाई नहीं, इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैश आ रहा है। मैंने कही मैडम, और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी।
10: The cops have now filed an official complaint on the basis of an internal inquiry report. 2 people have been booked so far. One has been booked for causing death by negligence and the other for negligent handling of poisonous substance.
12: वार्ड की जो नर्स थी उन्होंने एक फॉर्मलिन इंजेक्शन वहां लाके रख दिया था और दूसरी नर्स ने आके उस इंजेक्शन को उस बालक को लगा दिया था। उसके पिता ने उसे मना भी करा, रोका भी था, तो उनकी लापरवाही पाए जाने से पहले मर्ग जांच हुई थी। बाद में हमने रिपोर्ट लेकर के उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें विषैले पदार्थों को असावधानी और लापरवाही से उपयोग करने के संबंध में धाराएं लगाकर तो मामला दर्ज किया है।
13: वो नर्स जिन्होंने गलती की थी उनकी गिरफ्तारी हो गई
12: है, उनको लाकर के पूछताछ किया जा रहा है।
10: The tragic incident has once again raised serious questions about patient safety and protocols in one of the country's premier medical institutes. Bureau Report, India Today.
0: A communal violence incident erupted late yesterday evening in Bairagiwala village under the Sahaspur police station area of Dehradun. This incident took place over a petty water dispute issue. And the police have now registered a case against 3 named accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. Let us take a look at this detailed report.
14: Clashes, vandalism, arson and vehicles set on fire. What began as a petty water dispute over irrigation and land quarrel resulted into a full-blown war claiming the life of an innocent. An angry mob barged into the house of the accused and set it on fire.
15: किस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है आपकी लपटे हालांकि विस्फोट भी हो रहा है आक्रोशित भीड़ ने कुछ देर पहले पथराव भी किया था पुलिस लगातार स्थिति को संभालने में जुटी हुई थी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक आपको दिखा रहे हैं ये कि किस तरह से आरोपी के घर को आके हवाले कर दिया गया है
14: Police have registered a case against three accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. The situation in the village has remained tense.
16: You can see there's complete silence in the village after police resorted to charge. And right now, the police has also surrounded the area completely. The fire brigade, the fire tenders can be seen over here to douse the fire. And the situation remains tense. However, according to the police personnel, the situation is under control.
14: Police personnel are deployed in the area and are monitoring the situation to prevent any further escalation. As a precautionary measure, internet has also been suspended in the neighboring area. A large police contingent has been deployed in an effort to prevent further escalation. Local politicians claim that a group of local goons barged into the house of a Hindu and hacked him to death.
17: Group of criminals mob lynched a young man of the village who was my party worker as well. They entered his house and killed him. It was a cold-blooded murder. And the youth and the people in this area are agitated.
14: According to police, Vinod Kumar and his family had an ongoing dispute with their neighbor, Imtiaz, over water supply in their fields. After the crime, government officials swung into action and razed the house of the accused with bulldozer. In view of the communal sensitivity of the incident, the administration has placed the area on high alert. Personnel from multiple police stations have been deployed in and around the village with the villagers demanding yogi-style bulldozer justice. With Tina Sahu and Ankit Sharma in Dehradun, Bureau Report, India Today.

0: The TMC rebellion has taken a major turn. We're shifting our focus to the domestic arena now. The breakaway faction has formally split from the party and announced a new political alignment. Rebel MP Kakoli Ghosh Dostidar announced that the faction is merging with the NCPI and will support the NDA. She also claimed that 20 rebel MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla and sought permission to sit separately. Senior leader Shrudeep Bondopadhyay confirmed the merger, saying the group has joined the NCPI and that the courts will decide who represents the real TMC indeed. The announcement came after rebel MPs met Speaker Om Birla and Union Minister Bhupendra Yadav. The Mamta camp hit back strongly. TMC MLA Madan Mitro accused the rebels of winning on Mamta Banerjee's name, called their actions unfair and claimed they do not have the numbers. He said any decision on moving court would be taken by Mamta Banerjee.
1: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
2: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ
3: कहाँ की पार्टी है दादा
4: डाउन करो ना दादा
2: ये पॉलिटिकल पार्टी है
4: डाउन है डाउन
2: और रिकॉग्नाइज कोई रीजनल पार्टी है
3: जी जी
2: तो वो पार्टी को साथ हम लोग मार्च हुआ
3: टीएमसी रहेगी वो अलग है आप
2: वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड
3: होगा क्लेम करेंगे
5: इससे मिला हम लोग क्या नाम है स्पीकर से उनको चिट्ठी दे दिया है ब्लॉक मांगा है ब्लॉक हमको मिल जाएगा पार्टी के बीच मिल जाएगा वेरी नाइस डिस्कशन विथ हिम एंड वेरी सक्सेसफुल बहुत अच्छा All the 20 members are with there. We want to see, under the leadership of the Chief Minister of West Bengal, Naya jo khela shuru hua hai, jam joint government, means hamara double engine ka sarkar, ek saath milke, kandha mein kandha milake kaam karne chahta hai, for the interest of the nation, for the interest of the public. Ye dekhna bahut zaruri hai, public hi chahta hai. Hai na? We are going to be success. बीजेपी हमको मदद मांगेगा हम देगा मदद
6: फर्स्ट आई स्ट्रांगली कंडेम दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं आई स्ट्रांगली कंडेम देयर एटीट्यूड बिकॉज दे ओन द इलेक्शन बाय यूजिंग द फोटो एंड नेम ऑफ ममता बनर्जी एंड तृणमूल कांग्रेस सो दिस इज बेसिकली अ ट्रेचरी Pressure can't be like that, that 2022 MP should go. Something complicated and gehra hai. Dal mein kuch kala hai.
0: The Trinamool Congress has taken its battle against rebel MPs directly to the Lok Sabha Speaker. As Mamata Banerjee's party moves to prevent any breakaway faction from gaining official recognition. In a key development, TMC MPs Kirti Azad and Shagurika Ghosh visited Lok Sabha Speaker Om Birla's residence and submitted a letter from Abhishek Banerjee. In the letter, Abhishek Banerjee urged the Speaker not to grant recognition facilities or separate status to any rebel group. Citing the anti-defection law, he argued that political splits no longer enjoy legal protection and warned that MPs attempting to function as a separate faction could face disqualification. The TMC leader also requested that the party's official leadership be heard before any claim by a rebel group is considered in what is being seen as Mamata Banerjee's latest bid to contain the very rebellion.
7: Supreme Court ke constitutional bench mein ye kaha gaya hai शेड्यूल 10 के 4 अनुच्छेद में कहा गया है कोई स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है, उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे, वो आवेदन हमने दे दिया है माननीय स्पीकर को और हमको पूरा विश्वास है कि कानून के अंतर्गत ही जैसा काम करते रहे स्पीकर वैसे करेंगे।
8: हमने चिट्ठी दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, संविधान इसको अलाउ नहीं करता है, ये संविधान के विपरीत है, ये कानून के विपरीत है।
9: मुलाकात हुई कि नहीं हुई?
8: इस तरह से आप अपनी नैतिक कमजोरी दिखा रहे हैं कि जब पार्टी हार जाती है, जिस चिन्ह के तले आप जीत कर आए हैं, जिस लीडर के फोटो के नीचे आप जीत कर आए हैं, जब वो पार्टी हार जाती है उसी पार्टी को आप छोड़ रहे हैं, उसी लीडर को छोड़ रहे हैं।
0: It's a heartbreaking case of alleged medical negligence. At least that's what it being called, but one can also term it as a crime. It has emerged from AIIMS Bhopal, where a 3-year-old blood cancer patient lost his life after being mistakenly administered a hazardous chemical instead. Months after the incident, police have now registered an FIR based on findings of an internal inquiry. Take a look at this report.
10: A shocking case of medical negligence has come to light from AIIMS Bhopal. Life of a 3-year-old Sarthak snuffed out. The infant lost his life in December 2025 when a nurse employed at the hospital injected a hazardous chemical to the child. A clear case of medical negligence. 3-year-old Sarthak Yadav, who was undergoing treatment for blood cancer at the prestigious hospital, died when the nurse injected formalin into his IV line. The child was admitted to the pediatric ward on December 15th. He was scheduled for a bone marrow biopsy. The family claims on December 17th morning, a nursing officer picked up a syringe marked F containing formalin, which was kept for the biopsy, and used it to flush the child's blocked IV line without verification.
11: मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मैरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लाई नहीं, इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैश आ रहा है। मैंने कही मैडम, और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी।
10: The cops have now filed an official complaint on the basis of an internal inquiry report. 2 people have been booked so far. One has been booked for causing death by negligence and the other for negligent handling of poisonous substance.
12: वार्ड की जो नर्स थी उन्होंने एक फॉर्मलिन इंजेक्शन वहां लाके रख दिया था और दूसरी नर्स ने आके उस इंजेक्शन को उस बालक को लगा दिया था। उसके पिता ने उसे मना भी करा, रोका भी था, तो उनकी लापरवाही पाए जाने से पहले मर्ज जांच हुई थी। बाद में हमने रिपोर्ट लेकर के आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें विषैले पदार्थों को असावधानी और लापरवाही से उपयोग करने के संबंध में धारा मामला दर्ज किया है।
13: वो नर्स जिन्होंने गलती की थी उनकी गिरफ्तारी हो गई
12: है, उनको लाकर के पूछताछ किया जा रहा है।
10: The tragic incident has once again raised serious questions about patient safety and protocols in one of the country's premier medical institutes. Bureau Report, India Today.
0: A communal violence incident erupted late yesterday evening in Bairagiwala village under the Sahaspur police station area of Dehradun. This incident took place over a petty water dispute issue, and the police have now registered a case against 3 named accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. Let us take a look at this detailed report.
14: Clashes, vandalism, arson and vehicles set on fire. What began as a petty water dispute over irrigation and land quarrel resulted into a full-blown war claiming the life of an innocent. An angry mob barged into the house of the accused and set it on fire.
15: किस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है आपकी लपटे हालांकि विस्फोट भी हो रहा है आक्रोशित भीड़ ने कुछ देर पहले पथराव भी किया था पुलिस लगातार स्थिति को संभालने में जुटी हुई थी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आरोपी के घर को आके हवाले कर दिया गया है
14: Police have registered a case against three accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. The situation in the village has remained tense.
16: You can see there's complete silence in the village after police resorted to charge. And right now, the police has also surrounded the area completely. The fire brigade, the fire tenders can be seen over here to douse the fire. And the situation remains tense. However, according to the police personnel, the situation is under control.
14: Police personnel are deployed in the area and are monitoring the situation to prevent any further escalation. As a precautionary measure, internet has also been suspended in the neighboring area. A large police contingent has been deployed in an effort to prevent further escalation. Local politicians claim that a group of local goons barged into the house of a Hindu and hacked him to death.
17: Group of criminals mob lynched a young man of the village who was my party worker as well. They entered his house and killed him. It was a cold-blooded murder. And the youth and the people in this area are agitated.
14: According to police, Vinod Kumar and his family had an ongoing dispute with their neighbor, Imtiaz, over water supply in their fields. After the crime, government officials swung into action and razed the house of the accused with bulldozer. In view of the communal sensitivity of the incident, the administration has placed the area on high alert. Personnel from multiple police stations have been deployed in and around the village with the villagers demanding Yogi-style bulldozer justice. With Tina Sahu and Ankit Sharma in Dehradun, Bureau Report, India Today.

0: Let's now take you to France. Prime Minister Narendra Modi kicked off his crucial six-day Europe tour in Nice, a visit that's likely to take an already strong partnership, that is, strategic partnership between India and France, to the next level. Prime Minister Modi held bilateral talks with French President Emmanuel Macron, and the two leaders jointly inaugurated Bharat Innovates 2026, where Prime Minister Modi highlighted the depth of India-France ties, calling the relationship a special partnership built on shared vision, conviction and innovation. Modi said both nations are working together to find solutions to global challenges, with cooperation spanning areas from security to sustainability. The Prime Minister also underlined India's growing innovation ecosystem, saying the country's youth are shaping its future. He described India as a breeding ground for innovators, home to the world's third largest startup ecosystem, and said the nation has immense potential in artificial intelligence, which is being used to transform lives and create solutions for humanity. French President Emmanuel Macron called it a huge honour to welcome Modi and congratulated him on his record tenure as Prime Minister. Macron praised India's focus on research and innovation, saying the country is at the forefront of global technological progress. He also cited the Chandrayaan-3 mission as a testament to India's capabilities. Prime Minister Modi's visit comes as India and France seek to further strengthen their special global strategic partnership with collaborations in AI, semiconductors, clean technology and the wider innovation ecosystem.
1: Innovation is in India's DNA. Hajaron varson se Bharat ne apne knowledge aur innovation se दुनिया को नई दिशा दी है. मैथमेटिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, मेडिसिन से लेकर के योगा तक, भारत का योगदान संपूर्ण मानवता की प्रगति का आधार रहा है. आज हमने इसी विरासत को नई गति और नई दिशा दी है. साथियों, बीते 11-12 वर्षों में भारत ने इनोवेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है. पेटेंट फाइलिंग से लेकर इंक्यूबेशन नेटवर्क तक, स्टार्टअप इंडिया से लेकर पॉलिसी सपोर्ट तक, ये पूरी जर्नी एक मिशन मोड में आगे बढ़ी है. आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है. लेकिन हमारी सोच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. हमने इनोवेशन को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने का काम किया है. स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाए गए हैं. युवाओं को हैकेथॉन्स और इनोवेशन चैलेंजेस से जोड़ा जा रहा है. पूरे देश में इंक्यूबेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का विस्तार किया जा रहा है और स्पेशली विमेन इनोवेटर्स को हम ढेर सारी नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं. भारत इनोवेट्स, भारत इनोवेट्स का भी यही लक्ष्य है. भारत इनोवेट्स इज एन इन्विटेशन टू द वर्ल्ड टू को क्रिएट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन विद इंडिया. मैं अगले 3 दिनों में आपके सेशंस और डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. हम पार्टनरशिप चाहते हैं, हम को डेवलपमेंट चाहते हैं, हम जॉइंट रिसर्च चाहते हैं, हम शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं और हम लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहते हैं. मैं आज यहां मौजूद हर इन्वेस्टर, हर यूनिवर्सिटी और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं, आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए। आज डिफेंस और स्पेस, इससे जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप्स भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए हैं। इससे क्लीन एनर्जी, एडवांस रिएक्टर्स और फ्रंटियर रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनने जा रही है। यह रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी और भारत से निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी। फ्रेंड्स, एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी, आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है और भारत जो भी इनोवेट करता है, जो भी सॉल्यूशन देता है, उसका फायदा ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है।
2: Why is it obvious for France to believe in that capacity to innovate in India? Well, I would say, to put it bluntly, so you have the demographic dividends. What does it mean? So a country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation. And if I only had to mention the one example on what you can do, airspace is the perfect example. With the Chandrayaan 3 mission in July 2023 that allowed the very first moon landing on the south pole of the moon, that was led in a record time by Israel, with cost, with record force, is demonstrations in terms of strengths, innovation, but also in terms of implementations at the industrial level, and something that is very concrete. And this has to lead many countries of the world to see India how it's like today, not only a country promising talents and delivering them, but it's not only a country full of contractors. No, absolutely not. It's a country of innovation and disrupting country in terms of technology. So on the other side, I would like also to persuade the VCs, investors and entrepreneurs who are here in France and in particular in Nice today with us of what is France.
3: The two leaders addressed a gathering that comprised about 120 Indian deep tech startups as well as innovators and top technology institutions and close to 500 investors, venture capitalists and business leaders from France, from India and indeed from around the world. The Bharat Innovates event, as you probably know, is a platform to showcase the best of Indian deep tech companies and startups to the global audience. And today's event had representatives from the sectors of artificial intelligence, semiconductors, advanced computing, medtech, agritech, defense, space, renewable energy, among others. After addressing the event, both leaders walked through the exhibition and interacted with the innovators who had their innovations and solutions on display.
0: Salman Khan stole the spotlight at Aamir Khan Productions' 25th year celebration with his striking new look. Sporting a clean-shaven head and an all-black outfit, the superstar sparked buzz on social media, leaving fans curious about the reason behind this transformation. Leaving you with that report.

0: साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व
1: में। सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ।
2: कहाँ की पार्टी है दादा?
3: डाउन करो ना दादा,
1: एक पॉलिटिकल पार्टी है और रिकॉग्नाइज कोई रीजनल पार्टी है। तो वो पार्टी को साथ हम लोग मार्च हुआ।
2: टीएमसी रहेगी वो अलग है, आप
1: वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड
2: होगा। क्लेम करेंगे
4: इसे मिला हम लोग, क्या नाम है, स्पीकर से उनको चिट्ठी दे दिया है, ब्लॉक मांगा है, ब्लॉक हमको मिल जाएगा, पार्टी अभी मिल जाएगा। वेरी नाइस डिस्कशन विथ हिम एंड वेरी सक्सेसफुल
5: मीटिंग, अच्छा
4: बहुत अच्छा है। ऑल द 20 मेंबर्स आर विद देयर, वी वांट टू सी अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल नया जो खेला शुरू हुआ है जी, हम ज्वाइंट गवर्नमेंट मीन्स हमारा डबल इंजन का सरकार एक साथ मिलके कंधा में कंधा मिला के काम करने चाहता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। ये देखना बहुत जरूरी है, पब्लिक ही चाहता है ना। वी आर गोइंग टू बी सक्सेस। बीजेपी हमको मदद मांगेगा, हम देगा मदद।
6: फर्स्ट आई स्ट्रांगली कंडेम दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आई स्ट्रांगली कंडेम देयर एटीट्यूड बिकॉज दे ओन द इलेक्शन बाय यूजिंग द फोटो एंड नेम ऑफ ममता बनर्जी एंड तृणमूल कांग्रेस। सो दिस इज बेसिकली अ ट्रेचरी। प्रेशर कांट बी लाइक दैट, द 2022 एमपी शुड गो, समथिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड गहरा है, दाल में कुछ काला है।
7: The Trinamool Congress has taken its battle against rebel MPs directly to the Lok Sabha Speaker. As Mamata Banerjee's party moves to prevent any breakaway faction from gaining official recognition. In a key development, TMC MPs Kirti Azad and Shagurika Ghosh visited Lok Sabha Speaker Om Birla's residence and submitted a letter from Abhishek Banerjee. In the letter, Abhishek Banerjee urged the Speaker not to grant recognition facilities or separate status to any rebel group. Citing the anti-defection law, he argued that political splits no longer enjoy legal protection and warned that MPs attempting to function as a separate faction could face disqualification. The TMC leader also requested that the party's official leadership be heard before any claim by a rebel group is considered in what is being seen as Mamata Banerjee's latest bid to contain the very rebellion.
8: सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये कहा गया है, शेड्यूल 10 के 4 अनुच्छेद में कहा गया है, कोई स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है, जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है, उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे, वो आवेदन हमने दे दिया है माननीय स्पीकर को। और हमको पूरा विश्वास है कि कानून के अंतर्गत ही जैसा काम करते रहे स्पीकर वैसे करेंगे।
9: हमने चिट्ठी दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान इसको अलाउ नहीं करता है, ये संविधान के विपरीत है, ये कानून के विपरीत है।
10: मुलाकात हुई कि नहीं हुई?
9: इस तरह से आप अपनी नैतिक कमजोरी दिखा रहे हैं कि जब पार्टी हार जाती है, जिस चिन्ह के तले आप जीत कर आए हैं, जिस लीडर के फोटो के नीचे आप जीत कर आए हैं, जब वो पार्टी हार जाती है उसी पार्टी को आप छोड़ रहे हैं, उसी लीडर को छोड़ रहे हैं।
7: It's a heartbreaking case of alleged medical negligence. At least that's what's it being called. But one can also term it as a crime. It has emerged from AIIMS Bhopal, where a 3-year-old blood cancer patient lost his life after being mistakenly administered a hazardous chemical instead. Months after the incident, police have now registered an FIR based on findings of an internal inquiry. Take a look at this report.
11: A shocking case of medical negligence has come to light from AIIMS Bhopal. Life of a 3-year-old Sarthak snuffed out. The infant lost his life in December 2025 when a nurse employed at the hospital injected a hazardous chemical to the child. A clear case of medical negligence. Three-year-old Sarthak Yadav, who was undergoing treatment for blood cancer at the prestigious hospital, died when the nurse injected formalin into his IV line. The child was admitted to the pediatric ward on December 15th. He was scheduled for a bone marrow biopsy. The family claims on December 17th morning, a nursing officer picked up a syringe marked F containing formalin, which was kept for the biopsy, and used it to flush the child's blocked IV line without verification.
3: मैंने मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है. तो मैडम बोले लाई नहीं, इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैश आ रहा है. मैंने पेमेंट और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी. मैंने तीन बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड में सामने खड़ा था बच्चे के. मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी.
11: The cops have now filed an official complaint on the basis of an internal inquiry report. Two people have been booked so far. One has been booked for causing death by negligence and the other for negligent handling of poisonous substance.
12: वार्ड की जो नर्स थी उन्होंने एक फॉर्मलिन इंजेक्शन वहाँ ला के रख दिया था और दूसरी नर्स ने आके उस इंजेक्शन को उस बालक को लगा दिया था. उसके पिता ने उसे मना भी करा, रोका भी था. तो उनकी लापरवाही पाए जाने से पहले मर्ग जांच हुई थी. बाद में हमने रिपोर्ट लेकर के उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है जिसमें विषैले पदार्थों को असावधानी और लापरवाही से उपयोग करने के संबंध में धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया है.
13: वो नर्स जिन्होंने गलती की थी उनकी गिरफ्तारी हो गई है.
12: अभी शेष है उनको लाकर के पूछताछ किया जाना.
11: The tragic incident has once again raised serious questions about patient safety and protocols in one of the country's premier medical institutes. Bureau Report, India Today.
7: A communal violence incident erupted late yesterday evening in Bairagiwala village under the Sahaspur police station area of Dehradun. This incident took place over a petty water dispute issue. And the police have now registered a case against three named accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. Let us take a look at this detailed report.
14: Clashes. Vandalism, arson and vehicles set on fire. What began as a petty water dispute over irrigation and land quarrel resulted into a full-blown war claiming the life of an innocent. An angry mob barged into the house of the accused and set it on fire.
15: किस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है, आपकी लट पे हालांकि विस्फोट भी हो रहा है. आक्रोशित भीड़ ने कुछ देर पहले पथराव भी किया था. पुलिस लगातार स्थिति को संभालने में जुटी हुई थी. एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक आपको दिखा रहे हैं ये कि किस तरह से आरोपी के घर को आके हवाले कर दिया गया है.
14: Police have registered a case against three accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. The situation in the village has remained tense.
16: You can see there's complete silence in the village after police resorted to charge, and right now the police has also surrounded the area completely. The fire brigade, the fire tenders can be seen over here to douse the fire, and the situation remains tense. However, according to the police personnel, the situation is under control.
14: Police personnel are deployed in the area and are monitoring the situation to prevent any further escalation. As a precautionary measure, internet has also been suspended in the neighboring area. A large police contingent has been deployed in an effort to prevent further escalation. Local politicians claim that a group of local goons barged into the house of a Hindu and hacked him to death.
17: Group of criminals mob lynched a young man of the village who was my party worker as well. They entered his house and killed him. It was a cold-blooded murder. and the youth and the people in this area are agitated.
14: According to police, Vinod Kumar and his family had an ongoing dispute with their neighbor Imtiaz over water supply in their fields. After the crime, government officials swung into action and razed the house of the accused with bulldozer. In view of the communal sensitivity of the incident, the administration has placed the area on high alert. Personnel from multiple police stations have been deployed in and around the village, with the villagers demanding Yogi-style bulldozer justice. With Tina Sahu and Ankit Sharma in Dehradun, Bureau Report, India Today.

0: The TMC rebellion has taken a major turn. We're shifting our focus to the domestic arena now. The breakaway faction has formally split from the party and announced a new political alignment. Rebel MP Kakoli Ghosh Dostidar announced that the faction is merging with the NCPI and will support the NDA. She also claimed that 20 rebel MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla and sought permission to sit separately. Senior leader Shrudeep Bondopadhyay confirmed the merger, saying the group has joined the NCPI and that the courts will decide who represents the real TMC indeed. The announcement came after rebel MPs met Speaker Om Birla and Union Minister Bhupendra Yadav. The Mamta camp hit back strongly. TMC MLA Madan Mitro accused the rebels of winning on Mamta Banerjee's name, called their actions unfair and claimed they do not have the numbers. He said any decision on moving court would be taken by Mamta Banerjee.
1: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
2: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ
3: कहाँ की पार्टी है दादा
4: डाउन करो ना दादा
2: ये पॉलिटिकल पार्टी है
4: डाउन है डाउन
2: और रिकॉग्नाइज कोई रीजनल पार्टी है तो वो पार्टी के साथ हम लोग मार्च हुआ
3: टीएमसी रहेगी वो अलग है आप
2: वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड
3: होगा क्लेम करेंगे
5: इससे मिला हम लोग क्या नाम है स्पीकर से उनको चिट्ठी दे दिया है ब्लॉक मांगा है ब्लॉक हमको मिल जाएगा पार्टी के बीच मिल जाएगा वेरी नाइस डिस्कशन विथ हिम एंड वेरी सक्सेसफुल बहुत अच्छा है All the 20 members are with there. We want to see, under the leadership of the Chief Minister of West Bengal, Naya jo khela shuru hua hai, jiham joint government, means hamara double engine ka sarkar, ek saath milke, kandha mein kandha milake kaam karne chahta hai, for the interest of the nation, for the interest of the public. Ye dekhna bahut zaruri hai, public hi chahta hai. Hai na? We are going to be success. बीजेपी हमको मदद मांगेगा हम देगा मदद
6: फर्स्ट आई स्ट्रांगली कंडेम दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं आई स्ट्रांगली कंडेम देयर एटीट्यूड बिकॉज दे ओन द इलेक्शन बाय यूजिंग द फोटो एंड नेम ऑफ ममता बनर्जी एंड तृणमूल कांग्रेस सो दिस इज बेसिकली अ ट्रेचरी Pressure can't be like that, that 2022 MP should go. Something complicated and gehra hai. Dal mein kuch kala hai.
0: The Trinamool Congress has taken its battle against rebel MPs directly to the Lok Sabha Speaker. As Mamata Banerjee's party moves to prevent any breakaway faction from gaining official recognition. In a key development, TMC MPs Kirti Azad and Shagurika Ghosh visited Lok Sabha Speaker Om Birla's residence and submitted a letter from Abhishek Banerjee. In the letter, Abhishek Banerjee urged the Speaker not to grant recognition facilities or separate status to any rebel group. Citing the anti-defection law, he argued that political splits no longer enjoy legal protection and warned that MPs attempting to function as a separate faction could face disqualification. The TMC leader also requested that the party's official leadership be heard before any claim by a rebel group is considered in what is being seen as Mamata Banerjee's latest bid to contain the very rebellion.
7: Supreme Court ke constitutional bench mein ye kaha gaya hai शेड्यूल 10 के 4 अनुच्छेद में कहा गया है कोई स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है, उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे, वो आवेदन हमने दे दिया है माननीय स्पीकर को और हमको पूरा विश्वास है कि कानून के अंतर्गत ही जैसा काम करते रहे स्पीकर वैसे करेंगे।
8: हमने चिट्ठी दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, संविधान इसको अलाउ नहीं करता है, ये संविधान के विपरीत है, ये कानून के विपरीत है।
9: मुलाकात हुई कि नहीं हुई?
8: इस तरह से आप अपनी नैतिक कमजोरी दिखा रहे हैं कि जब पार्टी हार जाती है जिस चिन्ह के तले आप जीत कर आए हैं, जिस लीडर के फोटो के नीचे आप जीत कर आए हैं, जब वो पार्टी हार जाती है उसी पार्टी को आप छोड़ रहे हैं, उसी लीडर को छोड़ रहे हैं।
0: It's a heartbreaking case of alleged medical negligence. At least that's what's it being called. But one can also term it as a crime. It has emerged from AIIMS Bhopal, where a 3-year-old blood cancer patient lost his life after being mistakenly administered a hazardous chemical instead. Months after the incident, police have now registered an FIR based on findings of an internal inquiry. Take a look at this report.
10: A shocking case of medical negligence has come to light from AIIMS Bhopal. Life of a 3-year-old Sarthak snuffed out. The infant lost his life in December 2025 when a nurse employed at the hospital injected a hazardous chemical to the child. A clear case of medical negligence. 3-year-old Sarthak Yadav, who was undergoing treatment for blood cancer at the prestigious hospital, died when the nurse injected formalin into his IV line. The child was admitted to the pediatric ward on December 15th. He was scheduled for a bone marrow biopsy. The family claims on December 17th morning, a nursing officer picked up a syringe marked F containing formalin, which was kept for the biopsy, and used it to flush the child's blocked IV line without verification.
11: मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मैरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही मैडम, और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी।
10: The cops have now filed an official complaint on the basis of an internal inquiry report. 2 people have been booked so far. One has been booked for causing death by negligence and the other for negligent handling of poisonous substance.
12: वार्ड की जो नर्स थी उन्होंने एक फॉर्मलिन इंजेक्शन वहां लाके रख दिया था और दूसरी नर्स ने आके उस इंजेक्शन को उस बालक को लगा दिया था। उसके पिता ने उसे मना भी करा, रोका भी था, तो उनकी लापरवाही पाए जाने से पहले मर्ग जांच हुई थी। बाद में हमने रिपोर्ट लेकर के उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें विषैले पदार्थों को असावधानी और लापरवाही से उपयोग करने के संबंध में धारा लगाकर मामला दर्ज किया है।
13: वो नर्स जिन्होंने गलती की थी उनकी गिरफ्तारी हो गई
12: अभी शेष है, उनको लाकर के पूछताछ किया जा रहा है।
10: The tragic incident has once again raised serious questions about patient safety and protocols in one of the country's premier medical institutes. Bureau Report, India Today.
0: A communal violence incident erupted late yesterday evening in Bairagiwala village under the Sahaspur police station area of Dehradun. This incident took place over a petty water dispute issue, and the police have now registered a case against 3 named accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. Let us take a look at this detailed report.
14: Clashes, vandalism, arson and vehicles set on fire. What began as a petty water dispute over irrigation and land quarrel resulted into a full-blown war claiming the life of an innocent. An angry mob barged into the house of the accused and set it on fire.
15: किस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है आपकी लपटे हालांकि विस्फोट भी हो रहा है आक्रोशित भीड़ ने कुछ देर पहले पथराव भी किया था पुलिस लगातार स्थिति को संभालने में जुटी हुई थी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक आपको दिखा रहे हैं ये कि किस तरह से आरोपी के घर को आके हवाले कर दिया गया है
14: Police have registered a case against three accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. The situation in the village has remained tense.
16: You can see there's complete silence in the village after police resorted to charge. And right now, the police has also surrounded the area completely. The fire brigade, the fire tenders can be seen over here to douse the fire. And the situation remains tense. However, according to the police personnel, the situation is under control.
14: Police personnel are deployed in the area and are monitoring the situation to prevent any further escalation. As a precautionary measure, internet has also been suspended in the neighboring area. A large police contingent has been deployed in an effort to prevent further escalation. Local politicians claim that a group of local goons barged into the house of a Hindu and hacked him to death.
17: Group of criminals mob lynched a young man of the village who was my party worker as well. They entered his house and killed him. It was a cold-blooded murder. And the youth and the people in this area are agitated.
14: According to police, Vinod Kumar and his family had an ongoing dispute with their neighbor, Imtiaz, over water supply in their fields. After the crime, government officials swung into action and razed the house of the accused with bulldozer. In view of the communal sensitivity of the incident, the administration has placed the area on high alert. Personnel from multiple police stations have been deployed in and around the village with the villagers demanding Yogi-style bulldozer justice. With Tina Sahu and Ankit Sharma in Dehradun, Bureau Report, India Today.

0: Let's now take you to France. Prime Minister Narendra Modi kicked off his crucial six-day Europe tour in Nice, a visit that's likely to take an already strong partnership, that is, strategic partnership between India and France, to the next level. Prime Minister Modi held bilateral talks with French President Emmanuel Macron, and the two leaders jointly inaugurated Bharat Innovates 2026, where Prime Minister Modi highlighted the depth of India-France ties, calling the relationship a special partnership built on shared vision, conviction and innovation. Modi said, both nations are working together to find solutions to global challenges, with cooperation spanning areas from security to sustainability. The Prime Minister also underlined India's growing innovation ecosystem, saying the country's youth are shaping its future. He described India as a breeding ground for innovators, home to the world's third largest startup ecosystem, and said the nation has immense potential in artificial intelligence, which is being used to transform lives and create solutions for humanity. French President Emmanuel Macron called it a huge honour to welcome Modi and congratulated him on his record tenure as Prime Minister. Macron praised India's focus on research and innovation, saying the country is at the forefront of global technological progress. He also cited the Chandrayaan-3 mission as a testament to India's capabilities. Prime Minister Modi's visit comes as India and France seek to further strengthen their special global strategic partnership with collaborations in AI, semiconductors, clean technology and the wider innovation ecosystem.
1: Innovation is in India's DNA. Hazaron varson se Bharat ne apne knowledge aur innovation se दुनिया को नई दिशा दी है. मैथमेटिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, मेडिसिन से लेकर के योगा तक, भारत का योगदान संपूर्ण मानवता की प्रगति का आधार रहा है. आज हमने इसी विरासत को नई गति और नई दिशा दी है. साथियों, बीते 11-12 वर्षों में भारत ने इनोवेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है. पेटेंट फाइलिंग से लेकर इंक्यूबेशन नेटवर्क्स तक, स्टार्टअप इंडिया से लेकर पॉलिसी सपोर्ट तक, ये पूरी जर्नी एक मिशन मोड में आगे बढ़ी है. आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है. लेकिन हमारी सोच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. हमने इनोवेशन को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने का काम किया है. स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाए गए हैं. युवाओं को हैकेथॉन्स और इनोवेशन चैलेंजेस से जोड़ा जा रहा है. पूरे देश में इंक्यूबेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का विस्तार किया जा रहा है और स्पेशली विमेन इनोवेटर्स को हम ढेर सारी नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं. भारत इनोवेट्स, भारत इनोवेट्स का भी यही लक्ष्य है. भारत इनोवेट्स इज एन इन्विटेशन टू द वर्ल्ड टू को क्रिएट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन विद इंडिया. मैं अगले 3 दिनों में आपके सेशंस और डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. हम पार्टनरशिप चाहते हैं, हम को डेवलपमेंट चाहते हैं, हम जॉइंट रिसर्च चाहते हैं, हम शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं और हम लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहते हैं. मैं आज यहां मौजूद हर इन्वेस्टर, हर यूनिवर्सिटी और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं, आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए। आज डिफेंस और स्पेस, इससे जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप्स भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए हैं। इससे क्लीन एनर्जी, एडवांस रिएक्टर्स और फ्रंटियर रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनने जा रही है। यह रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी और भारत से निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी। फ्रेंड्स, एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी, आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है और भारत जो भी इनोवेट करता है, जो भी सॉल्यूशन देता है, उसका फायदा ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है।
2: Why is it obvious for France to believe in that capacity to innovate in India? Well, I would say, to put it bluntly, so you have the demographic dividends. What does it mean? So a country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation. And if I only had to mention the one example on what you can do, airspace is the perfect example. With the Chandrayaan 3 mission in July 2023 that allowed the very first moon landing on the south pole of the moon, that was led in a record time by Israel, with cost, with record force, is a demonstrations in terms of strengths, innovation, but also in terms of implementations at the industrial level, and something that is very concrete. And this has to lead many countries of the world to see India how it's like today, not only a country promising talents and delivering them, but it's not only a country full of contractors. No, absolutely not. It's a country of innovation and disrupting country in terms of technology. So on the other side, I would like also to persuade the VCs, investors and entrepreneurs who are here in France and in particular in Nice today with us of what is France.
3: The two leaders addressed a gathering that comprised about 120 Indian deep tech startups as well as innovators and top technology institutions, and close to 500 investors, venture capitalists and business leaders from France, from India and indeed from around the world. The Bharat Innovates event, as you probably know, is a platform to showcase the best of Indian deep tech companies and startups to the global audience. And today's event had representatives from the sectors of artificial intelligence, semiconductors, advanced computing, medtech, agritech, defense, space, renewable energy, among others. After addressing the event, both leaders walked through the exhibition and interacted with the innovators who had their innovations and solutions on display.
0: Salman Khan stole the spotlight at Aamir Khan Productions' 25th year celebration with his striking new look. Sporting a clean-shaven head and an all-black outfit, the superstar sparked buzz on social media, leaving fans curious about the reason behind this transformation. Leaving you with that report.

0: TMC rebellion has taken a major turn. We're shifting our focus to the domestic arena now. The breakaway faction has formally split from the party and announced a new political alignment. Rebel MP Kakoli Ghosh Dostidar announced that the faction is merging with the NCPI and will support the NDA. She also claimed that 20 rebel MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla and sought permission to sit separately. Senior leader Shrudeep Bondopadhyay confirmed the merger, saying the group has joined the NCPI and that the courts will decide who represents the real TMC indeed. The announcement came after rebel MPs met Speaker Om Birla and Union Minister Bhupendra Yadav. The Mamta camp hit back strongly. TMC MLA Madhun Mitro accused the rebels of winning on Mamta Banerjee's name, called their actions unfair and claimed they do not have the numbers. He said any decision on moving court would be taken by Mamta Banerjee.
1: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
2: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ
3: कहाँ की पार्टी है दादा
4: डाउन करो ना दादा
2: ये पॉलिटिकल पार्टी है
4: डाउन है डाउन
2: और रिकॉग्नाइज कोई रीजनल पार्टी है तो वो पार्टी के साथ हम लोग मार्च हुआ
3: टीएमसी रहेगी वो अलग है आप
2: वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड
3: होगा क्लेम करेंगे
5: इसे मिला हम लोग क्या नाम है स्पीकर से उनको चिट्ठी दे दिया है ब्लॉक मांगा है ब्लॉक हमको मिल जाएगा पार्टी अभी मिल जाएगा वेरी नाइस डिस्कशन हुई थी एंड वेरी सक्सेसफुल बहुत अच्छा है ऑल द 20 मेंबर्स आर विद देयर वी वांट टू सी अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल नया जो खेला शुरू हुआ है जी हम ज्वाइंट गवर्नमेंट मीन्स हमारा डबल इंजन का सरकार एक साथ मिलके कंधा में कंधा मिला के काम करने चाहता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक

0: The TMC rebellion has taken a major turn. We're shifting our focus to the domestic arena now. The breakaway faction has formally split from the party and announced a new political alignment. Rebel MP Kakoli Ghosh Dostidar announced that the faction is merging with the NCPI and will support the NDA. She also claimed that 20 rebel MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla and sought permission to sit separately. Senior leader Shrudeep Bondopadhyay confirmed the merger, saying the group has joined the NCPI and that the courts will decide who represents the real TMC indeed. The announcement came after rebel MPs met Speaker Om Birla and Union Minister Bhupendra Yadav. The Mamta camp hit back strongly. TMC MLA Madan Mitro accused the rebels of winning on Mamta Banerjee's name, called their actions unfair and claimed they do not have the numbers. He said any decision on moving court would be taken by Mamta Banerjee.
1: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
2: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ये पार्टी को साथ हम लोग शामिल हुआ
3: कहाँ की पार्टी है दादा
4: डाउन करो ना दादा
2: ये पॉलिटिकल पार्टी है
4: डाउन है डाउन
2: वो रिकॉग्नाइज्ड कोई रीजनल पार्टी है
3: जी जी
2: तो वो पार्टी को साथ हम लोग मार्च हुआ
3: टीएमसी रहेगी वो अलग है आप
2: वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड
3: होगा क्लेम करेंगे
5: इससे मिला हम लोग क्या नाम है स्पीकर से उनको चिट्ठी दे दिया है ब्लॉक मांगा है ब्लॉक हमको मिल जाएगा पार्टी अभी भी मिल जाएगा वेरी नाइस डिस्कशन विथ हिम एंड वेरी सक्सेसफुल
6: मीटिंग अच्छा
5: बहुत अच्छा है ऑल द 20 मेंबर्स आर विद देयर वी वांट टू सी